0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें पेश होंगी।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्र

0: संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 88.6 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। प्रोग्राम से पहले चंद जारती पैगाम।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान।

0: रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार, तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा, तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जैन।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दिन यानी 17 जुलाई 1998 को दुनिया के तकरीबन 120 ममालिक ने इटली के शहर रोम में एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए थे
1: जी,
0: जिसे रोम स्टैट्यूट कहा जाता है। रोम
1: जी बिल्कुल सबरीना, इसी तारीखी मुआहदे के तहत दुनिया की पहली जो मुस्तकिल और खुद मुख्तार बैन अल-अक़वामी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की बुनियाद नैदरलैंड के शहर में रखी गई थी।
0: बिल्कुल।
1: और फिर 2010 ईस्वी में युगंडा में होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि हर साल 17 जुलाई को बाकायदा तौर पर आलमी योम इंसाफ मनाया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में नस्ल कशी, जंगी जो जराइम और इंसानियत के खिलाफ होने वाले संगीन मजालिम के खिलाफ आवाज उठाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल दुरुस्त पस मंजर बयान किया रूफ आपने। ये दिन हमें ये याद भी दिलाता है कि कोई भी इंसान या रियासत कानून से ऊपर नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और मजलूमों को इंसाफ मिलना उनका बुनियादी इंसानी हक है
1: जी।
0: लेकिन जब हम इसी अखलाकियात और आलमी इंसाफ के तराजू में अपने आज के कश्मीरी मुआशरे को तोलते हैं रूफ, तो हमें एक इंतहाई तशवीशनाक और हूलनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा ये खूबसूरत कश्मीर जो अपनी सूफियाना रिवायात और ख़ास तौर पर औरत के एहतराम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ ख़वातीन के खिलाफ संगीन मुजरमाना अफाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है रूफ।
1: बिल्कुल। अगर हम हालिया चंद बरसों और महीनों के वाक़ात पर नज़र डालें तो ये जो है वाक़ात, सबसे पहले तो ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद और जहेज के लिए हिरासा करने के जो मामलात हैं, तो मासूम बेटियों और बहनों को बंद कमरों में जहनी व जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और कई बार ये जुल्म जो है इन मासूमों की जान तक ले लेता है।
0: बिल्कुल। और सिर्फ घर के अंदर ही नहीं रूफ, घर से बाहर का माहौल भी आप यही देखिए, जैसे कि एसिड अटैक्स आजकल किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है और सरेआम हिरासा करने के बुजदिलाना वाकयात सामने आते रहते हैं। आजकल सरे बाजार और तालीमी इदारों के बाहर बच्चों को या बच्चियों को हिरासा किया जाता है, हिरासा करके और उन पर तेजाब फेंक कर उनकी पूरी जिंदगी और ख्वाबों को बर्बाद कर दिया जाता है। रूफ
1: बिल्कुल इसका बेअत
0: बिल्कुल
1: मुतलिक मजीद का
0: हाँ
1: गुड बोजो आसू जुमतुल मुबारक
0: मुबारक
1: तो गुड बोजो इनाद शरीफ
0: बिल्कुल।

हम सफर ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 12:45 पर। प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। आज इस मौजू का 5वां किस्त पेश होगा। इस मौजू पर रोशनी डालेंगे हम सफर मैरिज काउंसलिंग इदारे शरीफ के सरबरा और इस प्रोग्राम के रूह रवां हजरत मौलाना फयाज अहमद जरूर साहब दामत बरकातहुम। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा।

सुबह 9 बजे मकामे रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। सूफी सदा, यह प्रोग्राम पेश होता है सुबह 10 बजे। आज के प्रोग्राम का मौजू है तसव्वुफ तो मोहब्बत। तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखून।

जोर अहमद गाबरू और साथी छह अगरवाल पेश करेंगे जिनके 11:30 पर और फिर 2:30 बजे इनसे आप कलाम दमबाज यूसुफ और कलाम शमस फकीर सुनेंगे। बजमी निस्वार आस्ता होगी दोपहर 12:40 पर। दिन के 1:10 पर NCERT का तैयार करदा सुपानसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश होगा सपहर 3:00।

पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4 बजे नष्ट होता है। पंजाबी प्रोग्राम सपहर 4:30 पर पेश होगा। इसमें इंटरनेशनल जस्टिस डे के हवाले से बात करेंगे एडवोकेट बिक्रमदीप सिंह। गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें 5:00। दयाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे 6:05 पर। हालात वाकत की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरबीन के जरिए 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है 8:00। समीन यही अब के बाद हमारे यहां से नश्र होने वाले प्रोग्राम।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम में 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz पर सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय

0: शिक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के 2 सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज 3 राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी

0: के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की।

0: है। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ता ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रूफ अली और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में साथ दे रही हैं सबरीना महराज। सबरीना, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से। अब जो यह है समर वोकेशन, ये खत्म होने वाली है। मंडे से अब बच्चों को फिर से स्कूल जाना है। तो जुमा के इस मुबारक दिन आकाशवाणी श्रीनगर के इस खूबसूरत अखलाकी थीम जो है के साथ हम सब मिलकर ये अहद करते हैं और अपने घरों में ये पैगाम आम करते हैं, अपने बच्चों के ये जो समर असाइनमेंट हैं ये चेक करें, इन्हें जिम्मेदारी सिखाएं और इन्हें नदी नालों से दूर रखें, महफूज रहें और अपने घर वालों को भी खुश रखें।
3: बिल्कुल सही। और चूंकि आपने कहा बच्चों के समर असाइनमेंट वालदेन की जिम्मेदारी है कि वो चेक करें, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सिखाए, नदी नालों से दूर रखें, महफूज रहें और अपने घर

0: आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायम सोप। तो हम बात कर रहे थे सबरीना बेक बाइटिंग के हवाले से।
1: बिल्कुल,
0: एक सेहतमंद माशरे के लिए भरोसा ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। अखलाकी मुफक्किरीन का कहना है जो कि गिबत करने वाला शख्स जो है दरअसल पूरे समाजी जो ढांचा है को नुकसान पहुंचाता है। जब एक महफिल में किसी तीसरे की बुराई की जाती है तो वहां मौजूद बाकी लोगों के दिल में भी ये वहम बैठ जाता है कि ये शख्स जो है मेरे जाने के बाद मेरी भी बुराई करेगा। यूं माशरे से खलूस और यकीन खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल सही। दुनिया के बड़े बड़े अखलाकी और फलसफियाना उसूलों पर अगर गीबत को परखा जाए रूफ, तो ये हर जगह गलत साबित होती है। दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां की जाएं। लिहाजा दूसरों की गीबत करना इस बुनियादी अखलाकी असूल की सरी खिलाफ वर्जी है रूफ।
0: बिल्कुल, अखलाकियात सिर्फ दूसरों के साथ सलूक का नाम नहीं बल्कि ये आपकी अपनी शख्सियत का आईना भी है। जब शख्स गिबत का आदि हो जाता है इसकी सोच जो है मनफी हो जाती है, यानी नेगेटिव।
1: बिल्कुल, वो लोगों की अच्छाइयों को देखने और उनसे सीखने की सलाहियत खो देता है और उसका पूरा ध्यान दूसरों के अयूब तलाश करने में लगा रहता है।
0: और ये चीज जो है इंसान को हसद, कीना और बुग्ज जैसी अंदरूनी बीमारियों में मुब्तला कर देता है।
1: जी, अखलाकियात का तकाजा ये है कि हम अपनी जुबान को दूसरों के लिए अमान बनाएं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोशी इख्तियार करना ही सबसे बड़ा अखलाकी दर्जा है।
0: बिल्कुल।

Tu yêu gulanı bir şekserin heçi yu bird posan. Ya आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है. सुबह के 8:30 हो रहे हैं. आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं.

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 9 बज रहे हैं। समाप्त करें मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: सुबह खैर। आज जुमतुल मुबारक है। साल 2026 के माह जुलाई की 17 और सफरुल मुजफ्फर 1448 हिजरी की दूसरी तारीख। श्रीनगर से आयशा अखबारों में शामिल अहम खबरों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समीन, रोजनामों में मुख्तलिफ मौजूदात की खबरें शाया हुई हैं और चंद अहम खबरों ने अखबारात के पहले सफात पर जगह बनाई है, जिनको लेकर आज की शेष सुर्खियां तरतीब पाई हैं। एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी यह है, वादी एक बार फिर गर्मी की लपेट में, जुलाई का दूसरा बुलंद तरीन दर्जे हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड, दो दिन शदीद गर्मी रहेगी, 19 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, 20 के बाद शिद्दत अख्तियार करने का इम्कान।
3: दिफाई तैयारियों के लिए सरहदी इलाकों में राबताकारी बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम जारी, बाज़ौकात जंग का पहला महा सरहद नहीं बल्कि सड़क होती है, सरहदी बुनियादी ढांचा मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग में भी नागजी रहेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में सरहदी इलाकों में शहराओं की तामीर में भी इनकलाब बरपा किया जाएगा। राजनाथ सिंह।
0: दिल्ली एहतजाज का मुकाम या तरीकेकार बदल सकता है, मनसूबा नहीं। ताज़ियत के मौके को सियासत के

0: इस्तेमाल ना करें उमर अब्दुल्ला।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नजराना वातियात के इंतजामी निजाम का जायजा लेने के लिए श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड मीटिंग की सदारत की।
0: एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के लिए 8,000 का कोटा, दरखास्तें अब तक 2,600, आखिरी तारीख में 4 दिन बाकी, सफर महमूद से दूरी क्यों, हज सबकी तमन्ना, पैसा सबसे बड़ी रुकावट, कम खर्चे की वजह से उमरा अदायगी का बढ़ता हुआ रुझान।
1: एक और सुर्खी है, जम्मू से कश्मीर आने वाले यात्रियों की तैदाद 1,04,488 तक पहुंच गई। 14 दिनों में दी तकरीबन 3,30,000 यात्रियों ने हाजिरी। जमेरात को 5,201 यात्री 191 गाड़ियों में बालतल और ननवन बेस कैंप पहुंचे।
0: कांग्रेस जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत करेगी, रियासती हैसियत की बहाली, रोजी अव्वल से हमारा मुतालबा मीर।
1: शिमाली कमान के फौजी कमांडर का दौरा बसंत गढ़, सिक्योरिटी सूरतेहाल का लिया जायजा। बदलते सिक्योरिटी हालात के पेश नजर फोर्सेस को हर वक्त चौकस रहना होगा। दुश्मन अनासर के नापाक अजायम को नाकाम बनाने और फैसला कुन बर्तरी के लिए फोर्सेस हम आहंगी जरूरी, जनरल प्रतीक शर्मा।
0: 20 जुलाई का एहतजाज हर हाल में होगा, रियासती दर्जे की बहाली का वादा पूरा करने का वक्त आ गया, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी।
1: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पासपोर्ट की तजदीद के लिए अदालत से एनओसी की इजाजत, बैरूनी मुल्क सफर के लिए मुतलका अदालत से पेशगी इजाजत लाजमी होगी। क्रिकेट एसोसिएशन केस में अदालत ने 1 साल पासपोर्ट की तजदीद पर रजामंदी जाहिर की।
0: एहतजाज से रियासती दर्जा वापस नहीं मिलेगा, अवाम की तवज्जा अपने नाकामियों से हटाने की कोशिश, दरक्षा अंद्राबी।
1: 110 किलो फी मीटर फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार के साथ तैयार की गई ट्रेन आज चलेगी। वजीर आजम जुम्मे को हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
0: सोपोर का तारीखी सुभान स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार, शहरियों का फौरी बहाली का मुतालबा, हुकाम ने नए मंसूबे का यकीन दिलाया।
1: जीरो ब्रिज से पाता चौक तक जालिम पर रिवर क्रूज ट्रांसपोर्ट, मकामी बाशिंदू और सयाहों की सैर व तफरी की नई मंजिल की तैयारियां।
0: श्रीनगर में 18 जुलाई से नवरोज चिनार किताबी मेले का आगाज, किताबों की नुमाइश, अदबी नशस्तें, बच्चों की सरगर्मियां और कहानी गोई शामिल।
1: मरकज का सरहदी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने का फैसला, जम्मू कश्मीर में नई चौकियां, जदीद निगरानी और एंटी ड्रोन निजाम नस्ब किया जाएगा।
0: बलून का तहफुज अवलिन दर्जे, स्पीकर रहीम राहतर, हिफाजती कामों की मियारी तकमील की हिदायत। समीन सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।

0: किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: पयामे सुबह
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
1: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
2: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
1: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
3: मकामी रोजनामे की सुर्खियां बराह रास्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। अब दीगर सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू पुलिस ने बिजली मोटर चोरी का मामला हल कर लिया, नाबालिग समेत 3 मुलजमीन गिरफ्तार।
4: छतरगढ़ शांगस में बादल फटने और सैलाबी रेलों से खेत और बागा तबाह, सैकड़ों किसानों का रोजगार खतरे में, मकई धान और सेब के बागात को नुकसान, नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल शुरू, मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालिबा।
3: सांबा में PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत मार्केटिंग पर बेदारी प्रोग्राम।
4: बारामुल्ला में मीडिया से वाबस्ता अफराद के लिए ताज़ा हुक्मनामा नाफिजुल अमल, सरकारी तकरीबात तक रसाई के लिए DIO के जारी करदा प्रेस कार्ड लाजमी करार, खिलाफ वर्जी या गैर मजाज रसाई को संजीदगी से देखा जाए, SSP बारामुल्ला।
3: एक अंग्रेजी रोजनामे की सुर्खी है, 2 JNK कैंडिडेट्स अमंग स्टेट टॉपर्स एज 11.21 लेक क्वालिफाई इन NEET UG 2026। The National Testing Agency on Thursday declared the result of the National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate 2026, with 11.21 lakh candidates qualifying for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and other courses. 2 candidates from Jammu and Kashmir also featured in the official state-wise toppers list. Hadia Nisar emerged as the highest ranked candidate from J&K, securing All India Rank 99 with a percentile score of 99.99.
4: CS reviews scientific waste management at Achan Waste Management Facility, Srinagar. DC State Taxes recovery reviews recovery proceedings, calls for speedy disposal of GST VAT arrears.
3: ईरान पर अमेरिकी हमला, हम बका की जंग लड़ रहे हैं तेहरान।
4: और एक अंग्रेजी सुर्खी है, जम्मू कश्मीर बैंक होल्डर्स पेंशनर्स मीट इन छानापोरा, डिजिटल बैंकिंग साइबर सेफ्टी हाइलाइटेड फॉर पेंशनर्स।
3: दुनिया की कोई ताकत आबनाई हरमूज को हमसे नहीं छीन सकती, मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर।
4: एक और सुर्खी है, रियासती दर्जे की बहाली हमारी अवलीन तरजी, नासिर असलमानी, जम्मू कश्मीर से हकीकी मोहब्बत रखने वाले 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे।
3: आबनाई हरमूज के जरिए सफर करने वाले बहरी जहाजों पर भारतीय कारकुनों की तानियाती पर पाबंदी। 7 करोड़ साइबर फ्रॉड, नाइजीरियन बाशिंदे समेत 49 गिरफ्तार।
4: अमले की शदीद कमी से सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज तदरीसी और तहकीक मुतासिर, स्किम्स में सैकड़ों डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल असामियां खाली, RTI का इंकशाफ।
3: तेहरान के खलीजी हमसाया ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर नए हमले, अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू की, आबनाई हरमूज में ईरानी फौजी सलाहितों को भी निशाना बनाया गया। अक़वामे मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार।

0: एक और सुर्खी है, सोनवार बंटवारा और शिवपुरा में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद, शाम डलते ही सड़कों पर आवारा कुत्तों के गोल, शहरी खूबजदा। कचरे के नाकस इंतजाम और नसबंदी मुहिम की सुस्त रफ्तारी से आवारा कुत्तों का मसला संगीन।
1: एक और सुर्खी है, अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी।
0: एक और सुर्खी है, जिला इंतजामिया पुलवामा का मुनफरद इकदाम, पहली बार बुजुर्ग शहरियों के लिए फेस्टिवल का इनेकाद, इंतजामिया की मुनफरद पहल, बुजुर्ग शरका ने खुशी का इजहार करते हुए इकदाम को सराहा।
1: अब खेल सफात से एक सुर्खी, अर्जेंटीना की आखिरी लम्हात में वापसी, इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। समीन, ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान वहां मौसूल होने वाले नजरानों और अतियात के इंतजामी निजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नजरानों की वसूली, गिनती, हिसाबो किताब, इसे महफूज रखने और इस्तेमाल के तमाम मराहिल का जायजा लेते हुए शिफाफियत, जवाबदेही और मयारी जाबितों पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया गया। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान किया है। इस इम्तहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालब इल्मों में से 11,21,000 तालब इल्मों को तिब्बी, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। नीट के लिए इस इम्तहान में 138 तालब इल्मों ने 690 से भी ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के 2 तालब इल्म भी शामिल हैं, जिनके नाम हादिया निसार और जैदान वानी बताए गए हैं। कौमी सतह पर यह इम्तहान टॉप करने वाले तालब इल्म पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल हैं। दोनों तालब इल्मों ने 715 नंबरात हासिल किए हैं। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सदारत में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से मुरतब की गई 2026 की छोटे दर्जे की कानकुनी से मुतलक मुजवजा पॉलिसी पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में कानून एतबार से एक फॉल टेक्नोलॉजी से चलने वाली और देरपा माइनिंग गवर्नेंस यकीनी बनाने पर जोर दिया। अतुल डुल्लू ने रिवायती कानकुनी से जुड़े तबकों के रोजगार को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए एक साफ और शिफाफ डिजिटल माहौल तैयार करने की जरूरत उजागर की, जिससे कानकुनी के कामों में इनकी शमूलियत पूरे हक के साथ बनी रहे। महकमा दीही तरक्

0: मीटर में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी को अनाउंसर सबरीना महराज।
1: जी रूफ, हम मौजू पर बात कर रहे थे, गीबत के हवाले से हम बात कर रहे थे। रूफ, इस्लाम में गीबत को एक संगीन गुना और माशरती जहर करार दिया गया है। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अब जरा सोचिए, ये कितनी इबरतनाक और खौफनाक मिसाल है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े फरमाया कि गीबत इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। इस्लाम ये भी सिखाता है कि अगर किसी में कोई ऐब हो, किसी में कोई ऐब है, तो उसकी पर्दापोशी की जाए, ना कि उसे महफिलों की जीनत बनाया जाए।
0: बिल्कुल सबरीना, सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि हर कोई जो मज़हब है वो जो यही कहता है कि ये जो गिबत है ये संगीन गुना है। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं उसमें लिखा है कि दूसरों की बुराई करने को एक जो है बड़ा पाप माना गया है। वहाँ लिखा है कि जो शख्स दूसरों की गीबत करता है वो अपने अच्छे कर्मों को जाया कर देता है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी, और गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि गीबत करने वाला शख्स दूसरों का कचरा अपने सिर पर उठाता है, यानी वो बिना किसी वजह के दूसरों की गुना अपने नाम कर लेता है।
0: जी बिल्कुल।

0: Sabem então se eu.
1: Kalami Nazim Bozan.
0: Peshis Karan.
1: Kalash Merat Sveti. आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ हैं सबरीना महराज। जैसे कि सबरीना, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आज जो है, आज है इंटरनेशनल जस्टिस डे और आलमी योम इंसाफ। तो इस हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। आप हैं एडवोकेट इनायत मलिक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस डे के हवाले से, कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद क्या है। इनायत साहब, प्रोग्राम पैम सुब में आपका खैर मकदम है।
2: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी, हमें बताइए कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और आलमी सतह पर इंसाफ के निज़ाम को मजबूत बनाने में इस दिन की क्या अहमियत है?
2: जी देखिए, एक्चुअली ये दिन जो है, ये इंटरनेशनल जस्टिस डे जो 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है आलमी सतह पे, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो रोम स्टेचूट कायम हुआ था 1998 में,
1: जी,
2: उसके तनाजुर में, उसके मुनासिबत में ये बताया गया था कि जो बैनुल अक्वामी सतह पे जो क्राइम्स हो रहे हैं, जिसमें हम वार क्राइम्स की बात करें, जिसमें हम जेनोसाइड की बात करें, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करें, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल

0: ड्रग ट्रैफिकिंग या चाइल्ड इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात करें, या चिल्ड्रन को या औरतों को सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इन जैसे खतरनाक जराइम के सिलसिले में ये दिन जो है हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत यह है कि इस दिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज जो हैं, जो ममालिक मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुल्की सतह पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे आप अभी रेडियो पे बात कर रहे हैं, चाहे टीवी पे बात कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का जमाना हो, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, तो उस सिलसिले में अगर हम बात करें डिजिटली जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है उस पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि ये जो इंटरनेशनल जस्टिस है इसके बुनियादी जो अगराज व मकासद है वो क्या है।
1: जी बिल्कुल, इनायत साहब हमें बताइए कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसमें क्या फ़र्क है, एक आम इंसान जो है तो ये कैसे जान सकता है कि इन में क्या फ़र्क है, ये इदारे आम इंसान को कैसे इंसाफ फराहम करते हैं।
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल छेड़ा आपने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इनका हेडक्वार्टर जो है वो एक ही जगह पे है, हेग नेदरलैंड्स में है।
1: जी जी,
0: लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे हम ICJ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका बुनियादी मकसद या जो आप उसकी बुनियादी ज्यूरिसडिक्शन बोले, बुनियादी डोमेन उसका बोले, वो ये है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के बीच में जो मसले मसाइल होते हैं वो उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन उन मसाइल को हल करने के रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दो मुल्कों के दरमियान किसी आबी वसाइल के बारे में जो है मसला क्रिएट हो गया, उस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है और वहां पे केस दायर किया जा सकता है, दो ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुल्क कहता है कि यहां तक मेरी टेरिटरी है, कोई मुल्क कहता है कि नहीं यहां तक मेरी टेरिटरी है, कोई कहता है कि नहीं जो हवाई हदूद है मैं यहां तक अपने हवाई हदूद इस्तेमाल कर सकता हूं या समंदरी हदूद यहां तक इस्तेमाल कर सकता हूं, इस रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स हो जाए तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है। तो जहां तक बात रही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ये रहता है कि ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ एक मुल्क केस कर सकता है।
1: जी जी जी,
0: एक नाजुक फर्क है।
1: अच्छा,
0: कि एक वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं, यहाँ एक मुल्क या एक से ज्यादा ममालिक जो हैं वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ, एक फर्द के खिलाफ, एक जो खतरनाक बैनुल अक्वामी जुर्म होगा, एक मामूली जुर्म नहीं, मामूली सतह पे चोरी होगी, मामूली सतह पे कोई लोकल लेवल पे अगर मर्डर भी हो जाता है उस रिलेटेड नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल आप एक दहशतगर्दी की अगर बात करें, मुल्की सतह पे कोई दहशतगर्द जो है डिक्लेयर हो जाता है, वो जेनोसाइड करता है इंडिविजुअली, वो इस किस्म के खतरनाक जराइम करता है, बच्चों के खिलाफ जराइम करता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारी वुमेन है उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे खतरनाक जराइम करता है, उसके खिलाफ एक मुल्क या एक से ज्यादा ममालिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। और फर्क यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सजा भी दे सकता है, जेल भी भेज सकता है, वारंट इशू कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो सिस्टम नहीं है, बल्कि वहाँ इफाम तफीम करते हैं या सेंक्शंस लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैन लगाए जाते हैं, वहाँ पनिशमेंट का कंसेप्ट नहीं है। ये बुनियादी फर्क है इन दो कोर्ट्स में।
1: जी बिल्कुल, आपने मुफसल जानकारी दी। तो इनायत साहब हमें बताइए कि ये जो मौजूदा दौर है जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, तो हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, वहाँ बैनुल अक्वामी बरादरी और अदालतें अपना जो मौसर किरदार अदा करने में क्यों नाकाम नजर आती हैं?
0: ये देखिए एक्चुअली ये है कि ये एग्रीमेंट बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, ये एग्रीमेंट बेस्ड एक कोर्ट होता है।
1: जी,
0: ये जिस तरह से अगर आप लोकल लेवल की बात करें, लोकल लेवल पे आपकी जुडिशरी जो है वो मजबूत होती है, वो इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मसला हो जाता है तो हमारी जुडिशरी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क जो है जुडिशरी हमारी जो है, जो हमारा अदलिया है वो आजादाना तरीके से काम करता है, उस पर कोई बाइनल जो बैरूनी जो प्रेशर है वो उस पर काम नहीं करता है, वो खुद अपने बलबूते पे फैसले लेते हैं, उनके फैसलों पे कोई बाहरी प्रेशर जो है वो असरअंदाज नहीं होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट की अगर हम बात

0: इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जस्टिस की बात करें, वहां मुल्कों की जो आपसी लॉबीज होती है, आपसी तजाद होते हैं, वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, वहां पे आपको एग्रीमेंट है कि इन इन चीजों को लेके हम जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट के सामने, इन इन चीजों को लेके हम जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। लेकिन वहां पे आपकी लॉबीज बन जाती है, कोई वीटो का इस्तेमाल करता है, कोई लॉबी करके स्ट्रांग अगर कोई मुल्क होता है, कोई मजबूत मुल्क होता है, चाहे वो माशी तरीके से हो चाहे सियासी तरीके से कोई मजबूत मुल्क हो, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है इस फैसले को बुनियादी सतह पे अमली सतह पे कामयाब नहीं होने देता है। क्योंकि बड़े लेवल पे जो कोर्ट होता है, ये बड़े लेवल का काम होता है, ये मुल्कों के दरमियान काम होता है, ये लोकल लेवल पे नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, निचली सतह पे नहीं होता है, बल्कि मुल्कों के दरमियान होता है। ये बड़े ममालिक होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका के, अमेरिका अगर आप रिसेंट एग्जांपल ले लें, अमेरिका ईरान के दरमियान टेंशन चल रहा है, मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, लेकिन वो क्रिमिनल कोर्ट जो वहां पे है, या इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे है, वो कोई फैसला ले ले, लेकिन यहाँ से मुल्क अपनी मनमानी करता है, वो नहीं मानता है, तो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस चीज को मनवाए, वो अपने फैसले को एनफोर्स करे। तो बाज अवकात में हम इसको टूथलेस टाइगर भी बोलते हैं, दांतों के बगैर जो हम अगर लाइन की बात करें, अगर हम शेयर की बात करें, दांतों के बगैर होता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है। यही वजह है कि जमीनी सतह पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है काम नहीं कर पाते हैं।
1: जी बिल्कुल इनायत साहब, हमें बोलिए कि जब हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं, चाहे हम वुमेन के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, बच्चों के खिलाफ जो होते हैं, या आम इंसान जो गरीब होता है, तब तो हमें ये बोलिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई जुर्म करता है, जो मुलजिम होता है, वो फिर छूट जाता है, और इसे फिर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। ऐसा लगता है कि ये बच गया तो दूसरों के लिए जो है उनको हौसला अफजाई मिलती है, ऐसा क्यों होता है?
0: जी देखिए, एक्चुअली जो अगर आप लोकल लेवल पे हम बात करें, लोकल लेवल पे जस्टिस की बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी हमारा जो अदलिया है उसमें कोई ऐसा फॉल्ट है कि नहीं मुजरिम जो है वो छूट जाता है, या हम मुलजिम कहें पहले। पहले हम इन दो चीजों को समझना है, इन दो अल्फाज को समझने की जरूरत है। एक मुलजिम होता है, एक मुजरिम होता है।
1: जी जी।
0: जब हम किसी बंदे को पकड़ते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं इसने औरतों के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म किया है, या हम बोलते हैं कि इसने कहीं पे कत्ल किया है, या हम बोलते हैं कि इसने कुछ ऐसा जुर्म किया है, जो हम नशेली चीजों की जो बात करते हैं वहां पे कोई इसने जुर्म किया होगा, तो उस सिलसिले में जो है हम कहते हैं कि जब हम किसी बंदे को पकड़ते हैं वो मुलजिम होता है।
1: जी जी।
0: वो मुजरिम नहीं होता है जब तक ना वो कोर्ट में साबित
1: हो जाए कि इसका। जी जी बिल्कुल।
0: अब हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वहां एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड आर प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनटिल प्रोन गिल्टी।
1: एग्जैक्टली।
0: तब तक हर एक बंदा जिसको आप पकड़ते हैं जुर्म करते हुए, या आप जिस पे इल्जाम लगाया जाता है कि जुर्म किया है, जब तक ना कोर्ट में ये साबित हो जाए कि ये बिल्कुल इसने ये जुर्म किया है, तब तक हम इसको मुजरिम करार नहीं दे सकते। तब तक ये मुलजिम है, तब तक इसके पास कानून ने तहफुजात रखे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: इसको फॉर एग्जाम्पल ये बंद हो गया, 10 दिन बाद 11 दिन बाद 5 दिन बाद 2 दिन बाद ये जेल से छूट जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है कानून के शिकंजे से नहीं बच जाता है।
1: जी जी।
0: बल्कि इसको ट्रायल फेस करनी पड़ती है, इसको कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ता है, फिर ये प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड है। प्रोसिक्यूशन हम बोलते हैं जो सरकारी तौर पे, जो सरकारी तौर पे जो लोग होते हैं उसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। कोर्ट में उन्होंने रखा होता है प्रोसिक्यूशन को, जिन्हें ये प्रूव करना होता है कि नहीं हमने जिस बंदे को पकड़ा है इसने बराबर ये जुर्म किया है।
1: जी।
0: अगर वो फेल हो गए इस चीज को प्रूव करने में, और वो अपना डिफेंस प्रूव करने में कामयाब हो गया, तो जाहिर सी बात है वो छूट जाता है। कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज हैं जिन टेक्निकलिटीज पे प्रोसिक्यूशन जो है वो खरा नहीं उतरता है, वो वहां पे फेल हो जाते हैं। कुछ प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज हैं, कुछ कानून ने जो है वो टेक्निकलिटीज रखी है। अगर उन बोटल नेक्स को कम्प्लीटली जो है प्रोसिक्यूशन कामयाब हो जाता है प्रूव करने में, तो उस सिलसिले में एक मुलजिम को सजा मिल सकती है, उसको मुजरिम करार दिया जा सकता है। लेकिन अक्सर केसेस में ये देखा जाता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो जाता है उन टेक्निकलिटीज पे उतरने में, वो फेल हो जाते हैं जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज है, जो उसमें प्रोसीजर है उस पर वो

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश सदान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
4: सूफी सदा, सूफी
5: सदा। बोजन वालिन चे इस सलाम अर्ज करान सामिनी मोहतरम, तसव्वुफ चु मोहब्बतुक पैगाम दिवान तो मोहब्बत चु कायनातुक रूह तसव्वुर इवान करन। सूफियाई किराम चे बिला मजहब मिलत बनी नो इंसान सिंदि बापत मोहब्बत मस बगरान दई हसद कीन तो अदावत बुर खसाइल इंसान सिंदि दिल मज दूर करित तसुन मन शुद्ध करान। सूफियन हंजन नजरन मंज छु यह समसार

Дод музыка сын.

Gajin nasay joyanlı.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम प्रोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह दह बज पेठ साढ़न दहन बजन तम नशर सपदान।
2: सविन तो बोजान सूफी तो रेशवे सारन पेठ मबनी प्रोग्राम सूफी सदा। इसके प्रोग्राम मौजूद तसफ़ तो मोहब्बत तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखुन तो माविन समीना नबी सनीस दिमसलानस प्रेरियो।

0: Payame sub.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
0: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक है, 10:31 हुए हैं। आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह की नशरियात। वक्त हो रहा है इंटरेक्टिव प्रोग्राम का। हमारे आज के प्रोग्राम के होस्ट हैं सबरीना महराज, और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान भी स्टूडियो में आ चुके हैं, डॉक्टर शकील शफाई
3: जी। आज के मेहमान से आप रूबरू कराएंगे, जो कि डॉक्टर शकील शफाई। आप सर बहसती बॉयज प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जेडीबल श्रीनगर में अपनी फ़राइज अंजाम दे रहे हैं। अखलाकियात के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि हम ये जानना चाहेंगे कि अखलाकियात हैं क्या। हमारे सामीन को आप आसान लफ्ज़ों में अखलाकियात पर रोशनी डालें।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अखलाकियात की एक तारीफ तो फ़लसफियाना है, जिसका ताल्लुक इंसान के पूरे रवैये से है। लेकिन अगर आम लफ्ज़ों में हम अवामी सतह की तारीफ जानना चाहेंगे अखलाकियात की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कुव्वत-ए-तमीज़ है जिससे इंसान

0: सही और गलत में पहचान कर सके, सही चीज़ को फ़रोग दे और जो गलत चीज़ है उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे
1: जी।
0: तो हर वो चीज़ जिससे इंसान सही और गलत में पहचान कर पाए, सही पर चले, हम उसको अवामी सतह पर अखलाकियात से ताबीर कर सकते हैं
1: जी।
2: और सर, अखलाकियात का जो ताल्लुक वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों से क्या हो सकता है, इस पे आप रोशनी डालिए हमारे सामने।
0: देखिए, अखलाकियात का ताल्लुक तो असल में पूरी ज़िंदगी के साथ है, और ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ हमें अच्छे अखलाक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे रवैये से भी है। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों से हमारा सबिका पड़ता है वो खुद हमारे वालिदैन हैं या हमारे अजीज़ और अकारीब हैं
1: जी।
0: तो यहाँ पर अगर हम अखलाकियात की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा अखलाक हमारे वालिदैन के साथ कैसा रहना चाहिए। जैसे हम उनसे मोहब्बत करें,
2: शुरू होता है।
0: बिल्कुल
1: जी सर।
0: जैसे हम उनसे मोहब्बत करें
1: जी जी।
0: उनकी इज्जत करें, तौकीर करें
1: जी।
0: उनकी ताजीम करें, उनकी खिदमत अंजाम दें
1: जी।
0: और उनका हुक्म बजा लाएं, क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा मुखलिस और सिंसियर किसी इंसान के हक में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे वालिदैन जो है वो ऐसी सोच रखते हैं जो हमारी सोच से अलग है, लेकिन उस सोच के पस मंज़र में भी उनके हुस्न जज्बात होते हैं
1: जी सर जी।
0: लिहाजा हमें उनकी कदर करनी है, जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे उनकी खिदमत करनी है, उनके जज्बात, एहसासात और नफ्सियात का ख्याल रखना है। इसी तरह रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, अकारिब हैं, जैसे वालिदैन में से जो वालिद साहब हैं उनकी तरफ के हैं या वालिदा की तरफ से हैं
1: जी सर,
0: तो उनका भी हक अदा करना है, उनसे मोहब्बतें करनी है, उनकी ज़ियारत के लिए उनके घर जाना है, उनके साथ मेलजोल बढ़ाना है, उनके साथ रिश्ते को संभाले रखना है और उस रिश्ते को किसी तरह से मुतासिर नहीं होने देना
1: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सामीन को डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल रहेगा। आपने अखलाकियात के हवाले से बताया, वालदैन की जिम्मेदारियों के हवाले से बताया, और हमारी सामीन को आप ये बताएं कि अखलाकी इकदार का ताल्लुक समाजी जिम्मेदारियों से क्या है, और आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: देखिए, समाज में हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा हैं
2: जी सर,
0: क्योंकि समाज में हम मुख्तलिफ तबकात के साथ उठते बैठते रहते हैं और हमारी कई हैसियतें होती हैं जहाँ हमें जिम्मेदारियों को अदा करना ज़रूरी बनता है। एक तो यह है कि हम समाज के अंदर सब लोगों की इज्जत करें
1: जी।
0: उनके साथ भी ताज़ीम के साथ पेश आएँ, किसी इंसान को हकीर न समझें, सिर्फ रंग पे, मज़हब पे या नस्ल के एतबार से, इलाके की नस्बत से, ये जो ज़ुबान के हवाले से, ये जो मस्नूई किस्म की हमने दीवारें खड़ी की हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं, तो इनसे ऊपर उठ के पहले तो हमें तमाम इंसानियत के साथ मोहब्बत और मवद्दत के साथ पेश आना है
2: जी सर।
0: फिर दूसरी बात यह कि हमारा रवैया ये होना चाहिए, जो कि हमारी अखलाकियात की एक बुनियादी बात है, कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हम किसी के लिए मुजिर साबित ना हो, हम किसी को परेशान ना करें, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। समाज में रहना है तो ठीक है, अपने खतूत पर आप चलते हैं, लेकिन इस तरह की दूसरों का हक जो है वो हक पामाल ना हो और वो हक ज़ाया ना हो या कोई हमारी वजह से परेशानी में मुबतला ना हो। इसमें कई बातें आती हैं, मसलन कभी कभी हम देखेंगे ऑफिसेज में जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर इसीलिए हैं, उनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, यानी वो खादिम होते हैं अवाम के, समाज के, तो उन्हें सिंसियरिटी के साथ, इखलास के साथ वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। इसी तरह एक उस्ताद है, उसको इखलास के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना है, या किसी भी ओहदे में कोई जज है या कोई वकील है या कोई किसी और शोबे में है, जहाँ भी जिस शोबे में भी कोई है तो वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खूबी वो अंजाम दे, ये उसकी अखलाकियात का हिस्सा है। फिर इसी तरह ये भी है कि जैसे अपने माहौल को साफ रखना, आमतौर पर हम समझते हैं कि इसका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका अखलाकियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अपने माहौल को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें और
2: अपने
0: आसपास जो हमारा माहौल होता है उसको साफ रखने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे कूड़ा करकट घर से निकालेंगे तो किसी और घर के सामने डाल देंगे, तो जाहिर है ये हमारी अखलाकियात के मुनाफी है।

0: इसी तरह ये भी है कि हम पार्क करते हैं गाड़ी को किसी गलत जगह पर, लोगों को अबूर और मरूर में तकलीफ हो जाती है, तो ये भी हमारी अखलाकियत के मुनाफी है। या कभी कभी हम किसी तकरीब के हवाले से, चाहे वो गम की हो खुशी की हो, बड़े बड़े खेमे और शामियाने खड़ा कर देते हैं सड़कों के बीच में, लोगों को अबूर अमूर में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये भी अखलाकियत के मुनाफी है। पार्कों में जाते हैं हम अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतना कूड़ा डालते हैं कि फिर वहाँ तअफ्फुन की जो है फ़ज़ा पैदा हो जाती है, ये भी अखलाकियत के मुनाफी है। इसी तरह नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो एक और धुआं है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को कसाफत से भर देती हैं, माहौल को तअफ्फुन ज़्यादा कर देती है, ये भी अखलाकियत के मुनाफी है। तो गर्ज ये है कि एक ऐसा इंसान बन के जीना है कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम बेज़र्र किस्म के इंसान हों और अपनी जिम्मेदारियों को बहुसन खूबी अंजाम देने की कोशिश करें। ये हमारा अखलाकियात का वो पहलू है जिसका ताल्लुक हमारे समाज के साथ है।
1: जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अखलाकी इक़दार के फ़रोग से समाजी जराइम का इंसदाद हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। देखिए, जराइम का इंसदाद महज कानून तश्कील देने से या कानून को नाफिज करने ही से नहीं होगा
1: जी।
0: उसकी भी अपनी इफादियत है, अहमियत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि जराइम पैदा होते ही क्यों हैं? जराइम पैदा होते इसीलिए हैं क्योंकि हम अखलाकी हिस किसी की मुर्दा हो जाए, तो यही वजह बनती है बाद में कि हम जो है अखलाकी जराइम का इर्तिकाब कर बैठते। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि समाज के जो मुख्तलिफ तबकात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है, या प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, या इसके अलावा जो आम लोग हैं, घरों में बैठते हैं, हमारी औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं, इन सब तक जो है अखलाकी एजुकेशन को, अखलाकी तालीम को पहुँचाना ज़रूरी है। अखलाकी हिस बेदार हो जाएगी, वो अखलाक के एतबार से हसास हो जाएंगे, अखलाकी हिस उनके अंदर पैदा हो गई, उन्हें पता चलेगा कि हम खुल्क अजीम किस चीज़ को कहते हैं, हम एक अच्छी ज़िंदगी कैसे माशरे के अंदर गुजार सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अखलाकी जराइम का बहुत हद तक इंसदाद होगा। तो मेरा यकीन है इस बात पर कि अगर हम अखलाकी अकदार को माशरे के अंदर फ़रोग दें, मोहब्बत को फ़रोग दें, एक दूसरे की खिदमत को फ़रोग दें, तो इससे अखलाकी और तहजीबी कदरें आगे बढ़ेंगी और जराम का इंसदाद हो जाएगा और बहुत हद तक जुर्म जो है वो समाज के अंदर कम हो जाएंगे।
2: जी सर, बातें तो होती ही रहेगी। और पहले आज जुमतुल मुबारक है, अपने सामीन को एक नात शरीफ सुनाते हैं।
0: बिल्कुल सुनाइए, माशाल्लाह।

0: जी सभी आप समझ कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह की नशरियात। इस वक्त प्रोग्राम आप समझ कर रहे हैं इंटरेक्टिव प्रोग्राम, जिसमें हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर शकील शिफाई, जो बहसियत वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जडीबल श्रीनगर में इस वक्त अपने फ़राइज अंजाम दे रहे हैं। सर, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, इखलाकी कदरों की गिरावट ने समाज में कौन कौन से मसाइल पैदा कर रहे हैं, इस पे आप रोशनी डालिए।
1: अखलाकी गिरावट की वजह से तो मसाइल ही मसाइल हैं
0: जी।
1: सबसे पहली परेशानी जिसका सामना पूरे समाज को है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत खो रहे हैं
0: जी।
1: म्यूचुअल टॉलरेंस जिस चीज़ को कहते हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सम्मान करें, तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। हर शख्स गुस्से में लग रहा है, हर शख्स जल्दी में लग रहा है, तो जज्बे खिदमत मान पड़ रहा है। हेल्प करना किसी की, किसी के काम आना बुरे वक्त में, सख्त वक्त में, तो इस तरह की कदरें जो हैं हम खो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारे बच्चे जो है, अल्लाह महफूज फरमाए सबको, कि हम मनशियात की राह पर चल रहे हैं, वो तो इसका भी बराह रास्त ताल्लुक हमारी अखलाकी गिरावट के साथ है। हमारी बच्चियाँ जो हैं, जिनको तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए सुबह शाम निकलना पड़ता है घर से, वो महफूज नहीं कर पा रही अपने आप को सड़कों पर, कोचों में या इन मकामात पर, तो ये भी हमारी अखलाकी गिरावट का ये नतीजा है। या हमारे एक्सीडेंट जो ज़्यादा होते हो रहे हैं इस वक्त, ट्रैफिक की वजह से हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, ये हमारी अखलाकी गिरावट का ये नतीजा है। या हमारे स्कूल्स के अंदर या ऑफिस के अंदर आए दिन लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश होते रहते हैं, समाजी जो सूरत हाल है बिगड़ी हुई है, वो लोग जहाँ पर, यानी कभी कभी ऐसे मकाम हैं हमारे जहाँ पर लोगों का इज्तिहाम होते हैं, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मामूली मामूली बातों पर वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस तक और अदालत तक जो है बाद में वो केस चला जाता है, तो इसका भी बराह रास्ता ताल्लुक हमारी अखलाकी गिरावट के साथ ही है। तो अगर देखेंगे समाज में जिस तरह की भी परेशानी का सामना है, जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त अजदा की तरह मुंह फुलाए हुए हैं, इस सब का ताल्लुक सामाजिक गिरावट के साथ ही है। सामाजिक एतबार से, अखलाकी एतबार से गिरावट आ गई, अखलाकी एतबार से हमारी हिस कमज़ोर हो गई, तो हम खूंखार किस्म के इंसान हो गए, दूसरों का हक मारने लगे, बातों बातों पर आस्ते में चढ़ाकर जो है लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, जिसको अल्लदुल खिसाम अरबी में कहते हैं, यानी बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान, बात बात पर जो है आंखों के दौरे सुर्ख हो रहे हैं, जाग निकल रही है मुंह से, जो है लोगों की गिरेबान फाड़ देता है, तो ये सूरत हाल जो है ये अखलाकी गिरावट का नतीजा है। तो देखेंगे समाज का जो ताना बाना बिखर रहा है, मुंतशिर हो रहा है शिराजा, अगर आप गौर करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो आप देखेंगे इसके पीछे बुनियादी तौर पर हमारी अखलाकी कदरों के फुकदान जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, वही इसका नतीजा है
0: जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने

0: अभी कहा है कि समाजी गिरावट, समाजी सूरतेहाल बिगड़ी हुई है और मामूली बातों पर झगड़ा होता है। अब इसमें तालीमी इदारों में कैसा रोल होना चाहिए, या क्या अखलाकी तालीम को तालीमी इदारों में राइज किया जाना चाहिए?
1: बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखिए, हमारी तहजीबी रिवायात, हमारी जो सकाफती तारीख इस पर गवाह है कि हमेशा से तालीमी इदारों में अखलाकी तालीम को जो सरफहरिस्त रखा गया है। बच्चे जो होते हैं वो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं या हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, वो कच्चे होते हैं अपने फ़िक्र के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से, अपने अमल के एतबार से। उन्हें तमीज़ नहीं होती है सही क्या गलत क्या है। अगर हम उन्हें सिर्फ हरूफ और नुकूश सिखाएं, वहाँ पर हम उन्हें सिर्फ लेबॉरटरीज में ले जाते हैं या लाइब्रेरी में ले जाते हैं या फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाएंगे, लिटरेचर पढ़ाएंगे या साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन हम साथ साथ उनकी जो मॉरल नरिशमेंट है जिसको हम अखलाकी तरबियत का नाम देंगे कि वो अगर इसके साथ नहीं रखेंगे तो आगे समाज के अंदर जब वो जिम्मेदारियों को अदा करने की पोजीशन में आ जाएंगे तो वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये तालीम नहीं दी गई होगी कि सही क्या गलत क्या है, हमें बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, समाज में कैसे रहना है। तो कदीम ज़माने ही से जो एक रिवायत रही है, जहाँ भी तालीम दी गई अखलाकी तालीम का उनसुर उसके साथ शामिल किया गया है। और आज भी पूरी दुनिया के माहिरीन, पूरी दुनिया के माहिर नफ्सियात इस पर मुत्तफिक हैं कि जहाँ भी तालीम हो वहाँ पर अखलाकी तालीम का उनसुर शामिल किया जाना चाहिए। और इसमें दो राय नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ज़माना बदलता जाएगा तो अखलाकी कदरों की जो अहमियत है, इफादत है, वो कम हो जाएगी, बल्कि वो जितना ज़माना आगे बढ़ेगा, जितने हम साइंस में या दूसरी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा अखलाकी कदरों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि तमाम तालीमी इदारों में, बल्कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ प्राइमरी के बच्चों के लिए, मिडिल के बच्चों के लिए भी, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ तक में भी या प्रोफेशनल कॉलेज हों, जहाँ भी हमारे बच्चे जिस उम्र में भी तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें अखलाकी तालीम उसके साथ दी जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, घरों में भी वालिदैन की जिम्मेदारी है,
1: वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वालिदैन की भी है, क्योंकि औलाद की पहली दानिशगाह तो उसका घर ही होती है, वालिदैन ही होते हैं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। देखिये, मैं बताऊंगा, ये इसका अखलाकियत के साथ बरा रास्ता ताल्लुक तो नहीं है, मगर दूर रस नताज का हामिल है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को जो उनके वालिदैन है दुकानों पर बेचते हैं सिगरेट लाने के लिए, सिगरेट खरीदने के लिए। देखिए, सिगरेट तो पहले से भी समाज के लिए एक नासूर है, पहले से ही एक इंसानी सेहत के लिए नासूर है। पूरे मुल्क के अंदर सिगरेट के खिलाफ अभी जो है हमारी हुकूमत ने भी और अवामी सतह पर भी बेदारी का काम हो रहा है कि देखिए सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है। अब एक वालिद अपने बच्ची को, छोटी बच्ची सिगरेट खरीदने के लिए मार्केट बेचता है तो क्या तालीम देता है वो उसको? या इसी तरह से घर के अंदर जो है वालिदा अपने फोन सेलफोन पर है, वालिद साहब अपने सेलफोन पर है, बच्चा कहाँ जा रहे हैं,
2: बुरा असर पड़ रहा
1: है कि नहीं, बच्ची कहाँ जा रही है, इनकी तरजीहत क्या बन रही है, ये किस चीज को सही कर रहे हैं, किस चीज को गलत कर रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, कौन से दोस्त हैं इनके, किन के साथ बैठना है, क्योंकि वालिदैन बिजी है अपनी जिंदगी में, उन्हें कोई इसके परवाह ही नहीं है कि बच्चा कहाँ जा रहे हैं। तो इसका बड़ा रास्ता ताल्लुक उसकी तरबियत पर पड़ेगा, उसके किरदार पर पड़ेगा, उसकी सोच पर पड़ेगा, उसकी नफ्सियात पर पड़ेगा। बाद में यही बच्चा जब कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, समाज में जाएगा तो वहां अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पाएगा। अब इसमें साथ एक और चीज भी मैंने देखी है कि हमारे वालिदैन कभी कभी ऐसा करते हैं कि बच्चों की मोहब्बत में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। हमने देखा है, चूंकि मैं तालीमी शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कभी कभी हमें एक बच्चों को अच्छे खानदान से जो होते हैं या खाते पीते घराने के लोग होते हैं, दो दो चार चार पांच पांच हजार रुपए उनके जेब में होते, 50-60-70 हजार का फोन उनके हाथों में होता है। ये जब इस तरह की फैसिलिटी आप अपने बच्चों को रखेंगे किसी कदगन के बगैर, किसी मॉरल चेक के बगैर, तो क्या नतीजा होगा? बच्चा तो अखलाकी एतबार से तो बिगड़ेगा ही, लेकिन बाद में समाज को भी बिगाड़ेगा। तो घर की तालीम जरूरी है, अखलाकी तालीम, स्कूल की अखलाकी तालीम जरूरी है, इसी तरह मजहबी अखलाकी तालीम जरूरी है। हमारे जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जो हमारे खुतबा हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां भी लोगों को एड्रेस करते हैं वो इस बात पर जोर दें, इस बात को आवाम के सामने रखें कि वो अखलाकी तालीम को अपने दायरे कार में जारी करने की कोशिश करें।
2: جی ڈاکٹر صاحب, اور ایک سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. ہماری بچیاں جو ہے اس وقت سماج میں ایک طرح کی نفسیاتی خوف میں مبتلا ہے, کیونکہ اخلاقی جو گراوٹ کے حاملین سے وہ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی. اس بارے میں

0: कुछ
1: बहुत बड़ा मसला है हमारा, ये बहुत बड़ा मसला। हालांकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सतह पर जो है इसमें इकदाम होते हैं, पुलिस भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, अदालतों में इस तरह की अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो नफसियाती खौफ में मुबतला ना हों, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारियाँ क्या अदा करेंगी। आज जो हमारी बच्चियाँ हैं वो कल की जो है म्यांमार है कौम की, वो तामीर करने वाली है, कौम को तामीर करने में अपना किरदार अदा करने वाली है। जब वो खौफ की नफसियात में अपनी स्टूडेंट एज ही में जीती होंगी, जिंदगी गुजार रही होंगी, तो आगे ये बरारस इसका ताल्लुक उनके किरदार पर पड़ेगा या उनकी जिम्मेदारियों पर पड़ेगा, चाहे वो जिम्मेदारियां उनकी घरेलू हों या फिर वो समाजी हों। जिस तरह की भी जिम्मेदारियां उन्हें बाद में अदा करनी है वो नहीं कर पाएंगी। तो इस नफसियाती खौफ से बचाने के लिए भी अखलाकी तालीम का होना जरूरी है। देखिये, यह है कि कानून हरकत में हो, अदालतें हरकत में हों, या कि समाज के जो अरबाब हल अकद हैं, जिसको सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, वो हरकत में हों, वो इस बात पर गौर करें, इन इश्यूज को एड्रेस करें। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने जो तलबा हैं, अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको अखलाकी एतबार से तैयार करें कि वो हमारी बेटियों की, हमारी बच्चों की इज्जत करना सीखें। हमारी बच्ची किसी भी जगह पर हो, किसी भी वक्त हो, उसकी इज्जत महफूज हो, उसकी नफसियात महफूज हो, वो खुद महसूस करे समाज के अंदर, वो घर से निकली है इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, वो घर वापस पहुंच जाए इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, वो किसी जगह वो परेशान हो, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश की जाए। क्योंकि समाज में ऐसे अनासिर जरूर होते हैं जो समाज को बिगाड़ने में जो है दिलचस्पी रखते हैं, तो ये सब चीजें एड्रेस होंगी अगर हम अखलाकी तालीम के जरिए से समाज को बेदार करने की कोशिश करें, अवाम को बेदार करने की कोशिश करें। इसका भी बरा रास्त ताल्लुक से है, क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं अगर वो इस तरह की खौफ की नफसियात में जी रही हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में या ऑफिस में, जहां भी उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत या उनकी नफसियात या उनकी जो हरासा किया जाता है, तो वहां ये चीज बहुत ही ज्यादा तश्वीशनाक है और जिसको हमें एड्रेस करने की अव्वलीन जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अखलाकी तालीम का यहाँ भी एक बुनियादी किरदार बनता है।
2: सर, और भी मॉरल एजुकेशन के बारे में हम अपने सामीन को जानकारी देंगे, पहले सुनाते हैं अपने सामीन को ये गीत
3: जी।

जी सावीन, आप समाप्त कर रहे हैं लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम। शकील साहब, एक सवाल ये रहेगा मनुष्यात के हवाले से, मनुष्यात का ताल्लुक अखलाकियात से क्या है और समाजी असलाहत का अखलाकियात से किस तरह का ताल्लुक है? यहाँ पर ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे समाज में ओल्ड एज होम्स का तस्वुर जगह जगह पाया जा रहा है, कई कई पर ये घर भी मौजूद हैं।

0: सवाल है से हमें बताइए।
1: देखिए, मनुष्यात का ताल्लुक तो अखलाक से बड़ा रास्ता है
0: जी,
1: क्योंकि अब तक की जो तबी तहकीकात हुई है उनकी रूह से जो बच्चे मनुष्यात के आदि होते हैं उनकी अखलाकी हिस बहुत कमज़ोर हो जाती है
0: जी।
1: और एक सर्वे भी किया गया इसमें, उसकी रिपोर्ट भी बता रही हैं कि जितने भी जुवेनाइल केसेस दर्ज हुए हैं अदालतों में उनमें उन जुवेनाइल केसेस में बच्चों की नफ्सियात पर जो तहकीकात हुई हैं पता चलता है कि अक्सर बेशतर बच्चे वो जरम में मुबतला पाए गए जो मनुष्यत में मुबतला थे
0: जी।
1: और ये तकरीबन इसका तनासुब 80% था
0: जी।
1: तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर बच्चे मनुष्यत के आदि हो जाते हैं या मनुष्यत का मिजाज बनता है समाज के अंदर तो जरायम बढ़ते हैं, क्योंकि अखलाक ही इसको ख़त्म कर देता है, इसमें दो राय नहीं है। बच्चा जो है वो मनुष्यत की लत में पड़ेगा, फिर इस आदत से मजबूर होकर जो है अपने अपनी नफ्सियात को तस्कीन देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कत्ल कर सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो डाका डाल सकता है, वो यहाँ तक कि किसी भी हद तक जा सकता है जिसकी तवजी माहिरी ने की है। तो मनुष्यात के फरूग का अखलाकी फुकदान के साथ एक ज़बरदस्त ताल्लुक है। जहाँ मनुष्यात का फरूग मिलेगा अखलाक की हिस कमज़ोर होगी, जहाँ अखलाकियात अच्छे होंगे मनुष्यात का रुझान कम होगा, वहाँ पर अखलाक की कदरें जो हैं वो यानी आगे बढ़ती होंगी और इंसानों की गाइडेंस करती होंगी। लिहाजा अगर हम चाहते हैं अपने समाज के अंदर जो है अखलाक की कदरें उजागर हों, अखलाक की कदरें फरूग पाएँ, इंसान अखलाक के एतबार से सेहतमंद हो, तो मनुष्यात के खिलाफ भी एक इकदाम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी सरकार इस सिलसिले में बहुत ही मुस्तैद है और मुतहर्रिक है और सरकार की तरफ से बहुत से इकदाम हो रहे हैं, हमें चाहिए कि इस सिलसिले में सरकार के साथ हम तआवुन करें और साथ साथ ये कि वो बच्चे जो मनुष्यत में मुबतला हैं उनका सही ट्रीटमेंट हो, अखलाकी ट्रीटमेंट हो, और ये कि जो बच्चे अभी मुबतला नहीं हुए हैं तो उनकी अखलाकी हस को बेदार करने की कोशिश करें ताकि वो इस इंतहाई मुहलिक आदत से अपने आप को दूर रख पाए। दूसरी बात जो आपने कही है ये ओल्ड एज होम्स की, ये बहुत बड़ा नसूर है जो अभी हमारे समाज के अंदर पनप रहा है। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि बहुत से मकामात पर इस तरह के घर तमीर हुए हैं, तो ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट भी क्या है असल में कि हमारे वालिदैन हम पर बोझ हैं, जब हमारे वालिदैन कमाने के काबिल नहीं हुए, जब वो बुढ़ापे के हाल में पहुँचे जहाँ उनको दवाई पर पैसा आएगा, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना, उनका ख्याल रखना है, या चिड़चिड़ा मिजाज होने की वजह से अब हमें बर्दाश्त करना है, तो उस वक्त बच्चे क्या करते हैं वो अपने वालिदैन से यादों में से एक से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ओल्ड एज होम्स में दाखिला करवाते हैं। तो ये अखलाकी जवाल की सबसे बदतरीन शक्ल है जो किसी समाज में राइज पजीर हो सकती है। असल में ये कॉन्सेप्ट हमारा तो नहीं है, यूरोप का है, वहाँ से आया है, क्योंकि उनकी सोच इसी तरह की है, लेकिन हमारे मशरकी माशरे के अंदर यहाँ पर हम अपने वालिदैन का हमेशा सम्मान करते आ रहे हैं, वालिदैन की तौकीर करते आ रहे हैं, ताजीम करते आ रहे हैं, हमारे सर हमेशा वालिदैन के साथ झुके ही रहते हैं, हमेशा जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं उनके अहकाम पर हम चलने वाले लोग होते हैं। लिहाजा हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे तो हम उन्हें बोझ तस्वुर करें फिर उन्हें ओल्ड एज होम्स में जो है उनको दाखिल करवाएँ। तो इस तरह की अगर मिसालें हैं हमारे समाज में, यकीनन हैं, अमली मिसालें भी हैं, तो ये भी इस वजह से हैं कि अखलाकी तालीम का फुकदान है, अखलाकी एतबार से बेहसी है, अखलाकी कदरें फरोग नहीं पा रहे हैं और हम अखलाकी एतबार से दिवालिया हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सदबा भी हम अखलाकी तालीम के जरिए ही से कर सकते हैं
0: जी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने अभी मनुष्यात के हवाले से हमें बोला और मनुष्यात में हमारे नौजवानों में ज़्यादातर आजकल ये रुझान बढ़ रहा है, लत में हमारे नौजवान जो है इसमें पड़ चुके हैं, तो तशब आसान यम से तनाव शिकार, यम से टेंशन शिकार नौजवान
1: सान कुछ बोर्ड अच्छी ये नफसती बीमारी और नफसती बीमारी कर पदान गर मसी हालात ग नफसती मसल से तमें गान पद ये तमिस तिस सूरत हाल सामने पे कर हेकान अंगेज़ कर मिसाल के तौर पर वालिद वालिदा तमान वालिद कमान ठीक दोशव स्ट्रगल कर लाइफ ब्रोह पकन खुद लेकिन तुम कूत टाइम हेकान पनस बचस दिख पे गरस मा तुम जहाँ बेहान इकवट डाइनिंग टेबलस पे या सुबह शाम चाय चवान पत कर पानव मसल डिस्कस पत वुछान बचस क्या जरूरियात यह ठीक पकान अमिशा।

0: करें और फिर एक दूसरे के हक को अदा करने की कोशिश करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें, सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें समाज को सही खतूत पर तामीर करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी नस्लों को क्या देंगे? क्या हम अपनी नस्लों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देंगे, बड़े बड़े पुल देंगे और बड़े बड़े दरिया दे देंगे उनको, या हम उनको बड़े टेक्नोलॉजी के सेंटर्स दे देंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज दे देंगे, लेकिन सूरत हाल ये होगी कि एक भाई दूसरे भाई पर एतमाद नहीं कर रहा होगा, एक इंसान दूसरे इंसान पर एतमाद नहीं कर रहा होगा, छुरियाँ चल रही होंगी, बंदूकें चल रही होंगी, महफूज नहीं होगा समाज के अंदर कोई। तो इस तरह का समाज हम अपनी गिफ्ट में अपनी नस्ल, आने वाली नस्लों को दे देंगे। तो ज़रूरी है कि हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, और अच्छा इंसान बनने का मतलब है अखलाकी कदरों का फरोग, जो मॉरल एथिक्स है उसको डेवलप करना और उसको प्रमोट करना समाज के अंदर, समाज के मुख्तलिफ तबका के अंदर। इसमें हम जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हम ज़रूर दें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप आज का लाइव इंटरैक्टिव शो समाप्त कर रहे थे, और आज इस शो में हमारे मेहमान थे डॉक्टर शकील शफाई, जो कि बहसते वॉइस प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जडीबल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये शो पसंद आया होगा। आप सुनते रहे आकाशवाणी श्रीनगर, और अब अगली आवाज़ सूफी फातिमा जी की, और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
2: शुक्रिया सबरीना। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 11:30 हुए हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम 268.8 मीटर तो एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन वंश पे छकर तरो फनकार जहूर अहमद गाबरू तहम नवाई मनीष बुजुत कलाई में दमबाज यूसुफ़।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित

होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 아가씨와니 वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करने के दौरान मुल्क की पहली हाइड्रोजन रेल सर्विस का आगाज कर रहे हैं। भारत अब हाइड्रोजन से चलने वाली रेल खिदमात मुतारिफ कराने वाले ममालिक जापान, चीन, जर्मनी और अमरीका की सफ में शामिल हो जाएगा। वजीर आजम जिंद के इकलाविया स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब करने के अलावा 14,700 करोड़ रूपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इम्तहानात से मुतलिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नतीज का ऐलान किया है। इस इम्तहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालब इल्मों में से 11,21,000 तालब इल्मों को तिब्बी, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। नीट के लिए इस इम्तहान में 138 तालब इल्मों ने 690 से भी ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के दो तालब इल्म भी शामिल हैं, जिनके नाम हादिया निसार और जैदान वानी बताए गए हैं। कौमी सतह पर यह इम्तहान टॉप करने वाले तालब इल्म पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल हैं। दोनों तालब इल्मों ने 715 नंबर हासिल किए हैं। तकनीकी तालीम के कुल हिंद कौंसिल ने जम्मू कश्मीर के तालब इल्मों के लिए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का अमल शुरू किया है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के महकमे आला तालीम ने AICTE को पूरे खत्ते में मुतलका तालब इल्मों के कागजात की जांच पड़ताल के लिए सहूलियाती मराकज कायम करने की हिदायत दी है। कौंसिल के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल यानी 16 जुलाई से ही फॉल हो गया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इतलात के मुताबिक आज 12 बजे तक मजीद 10,169 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। दरियासना आज 4,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी पहुंच गया है। हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इतलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8,000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
1: हज 2027 के लिए एप्लीकेशन का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन है। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट है जो एस्कुलेट हो रही है पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जा रहा है। अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
0: श्रीनगर में कल यानी 18 जुलाई से शुरू होने वाले बड़े किताब मेले के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का ये तीसरा शुमारा 26 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता करने वाली किताबों का जखीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहता है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खिदमात दस्तियाब रखते हैं। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लावरू ने इस सिलसिले में कल झील डल्प में एक शिकारा रैली

को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद फखरुद्दीन हामिद ने कल बारामूला के कानसपुरा में जेर तामीर नेशनल हाईवे ड्रेनेज की तामीर के अलावा कानसपुरा बारामूला बाईपास पैकेज 3 पर हो रहे काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि दोनों प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि इलाके में ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को मुमकिन बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने कल जिले के मुख्तलिफ ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों पर हो रहे काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुडवनी चिडर मातरम और पारिवन सहपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों जो कि जल जीवन मिशन के तहत तामीर की जा रही है का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों का अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सके। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कलवादी के मुख्तलिफ अजला में बाजारों का मुआयना करके खाने पीने की चीजों के मैयार का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दुकानों से कई अशिया के नमूने हासिल करके उनको जांच के लिए लेबोरेटरियों में भेज दिया गया। मुआयने के दौरान फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब कई दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया। बांडीपोरा में खेले जा रहे ब्रेक द चेन फुटबॉल टूर्नामेंट में जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने लीजेंड्स एफसी बांडीपोरा को एक गोल से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: श्रीनगर शब्द मिल गए बोझने की खबर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करना आज हरियाणा चंडीगढ़ तो पंजाब किस दौरे दौरान मुल्क गोडनिच हाइड्रोजन रेल सर्विस आगाज। भारत गि वन हाइड्रोजन पे चला वाजन रेल खदमत मुतारफ कर वाले मुल्कन जापान चीन जर्मनी तो अमरीका किस सफ़स में शामिल। वज़ीर आज़म लागन जिंद किस इकलाविया स्टेडियम मेंस अवमी रैली खिताब करने अलव 14,700 करोड़ रुपये हंद तरकी प्रोजेक्ट इफ्तिताह तो कन कन इम्तहान मुतलिक कौमी एजेंसी एन टी ए एन चु नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 के नतीजन ऐलान कर्मुत। अत इम्तहान मे लगभग 10,00,000 तलब इलम शामिल सपदमें यमों में 1,01,000 तलब इलम तिब डेंटल आयुष तो बाकी मुनसलिक प्रोग्राम अंदर दाखिल बापत कामयाब करार दिन आमित। नीट किस अत इम्तहान मे 138 तलब इलमों 190 पिठी नंबर हासिल करमित यमन मे जम्मू कश्मीर हादिया निसार तो जैदान वानी नाविक 2 तलब इलम शामिल। कौमी सतह पे इम्तहान टॉप करने वाले तलब इलम पंजाब आर्यन गुप्ता तो हरियाणा पंशुल बंसल दुशवयो 715 नंबर हासिल करम। तकनीकी तलीम हंद कुल हिंद कौंसलन जम्मू कश्मीर तलब इलम बाप तलीमी सेशन 2017 खुद खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम तहत रजिस्ट्रेशन तो कौंसलिंग हमल शुरू करम। अम बाप जम्मू कश्मीर आला तलीम महकम AICTE दुरुस्त खत मुतलिक तलब इलम हंद कागज पर्ख हाने बापत सहूलियती मरकज कायम कर हिदायत दिखमित। कौंसल चे अगे नोटिफिकेशन मुताबिक रजिस्ट्रेशन तो कौंसलिंग बापत ऑनलाइन पोर्टल रात 14 जुलाई पे फाल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जबर पे जारी तो वनिस तम लगभग 3,00,000 यात्रियों पवित्र गुफा हंद दर्शन करम। इतलाव मुताबिक दि आज दोपहर 12 बजे तम मजीद 10,169 यात्रियों पवित्र गुफा मज हाजरी। अ दौरान वोत आज 4,650 यात्रियों हंद शराहम कैफिल वादी। हाज 2017 बापत दरखास्त जमा करनाकिस आखिरी तारीखस तम सिर्फ कस तम दह रूदम। इतलाव मुताबिक यूस वनिस तम जम्मू कश्मीर हज कमेटी सिर्फ 2,07,000 दरखास्त वतम यहन यूस हज कमेटी निश लगभग 8,000 हज सीटन हंद कोटा छ। अमे हवाल वोन जम्मू कश्मीर हज कमेटी हंद एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशियन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान।
1: हज 2027 के लिए एप्लीकेशन का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट हैं जो एस्कुलेट हो रही है पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आजमीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
0: श्रीनगर पगह 18 जुलाई पर शुरू सपदन वाले

0: Ișe Akashvani, Srinagar, Nidivi, Zad, Arhoda, Sharia, Tekmeter, FM, Khatra, Sharia, 5 MHz, and Pet. Bhabaja, Sajji, Minut, Sajji, Second, Sapit. Maji, Ben, Bozan, Pan, Man, Pasan, Program, Bazmin, Sma. Program, Road, Boza, Yitijardi, Vakfa.
1: Radio, एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय

0: नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: Aaj Bharatiya Rail ne bhi 21vi sadi ki is technology mein ek bada step liya hai. आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी।
1: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of parliament. During the meeting, the

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओ, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उन

0: में स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको,

0: मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
0: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
1: वाह,
0: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
0: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
0: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
0: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
0: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
0: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और

0: कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो

0: की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15,000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
1: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
2: आजा, आजा, आजा।
1: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
3: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
4: अच्छा?
1: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
3: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
1: स्वामीनाथन बोला।
4: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
1: दादी ने पूछा।
3: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
4: अच्छा,
1: दादी काफी प्रभावित हुईं।
4: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
1: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
3: बस काफी है दादी,
1: उसने रूखे स्वर में कहा।
3: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
4: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
1: दादी ने पूछा।
3: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
4: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ ने उसे गलवा

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक

0: लगाकर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
1: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सिरिनगर।

जी समीन, आप सुन रहे थे नाते कवाली, पेश कर रहे थे अजीज अहमद खां वारसी कवाल, और साथ ही कलाम था शब्बीर सिद्दीकी हैदराबादी का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक

0: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। डीजीएमए ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खित्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अल-अक़वामी अज़ाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाले कौमी शाहराह प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के दरमियान सफर के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। अभी तक ये सफर तकरीबन 14 घंटे में तय होता है, लेकिन इस ट्रेन के आगाज के बाद ये सफर महज तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी तक इस फासले को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालिया बरसों के दौरान तरक्की का एक नया मरहला शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज से जिंद को भारत की तारीख में एक खसूसी मकाम हासिल हुआ है।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज जिंद बीजेपी और एनडीए की अच्छी हुक्मरानी की एक मिसाल बनकर उभरा है। इस मौके पर रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज को मुल्क की टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक तारीखी हुसूलिया भी करार दिया है।
2: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जिंद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
0: ये ट्रेन भारत में ही तैयार की गई है, जिसमें मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेलवे इंजीनियरिंग की जिद्दत में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का अंदाजा होता है। इस ट्रेन की रफ्तार जिंद सोनीपत सेक्शन पर 75 किलोमीटर फी घंटा है और ये अपने डिजाइन के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन न सिर्फ महफूज दर है बल्कि 89 किलोमीटर के इस सेक्शन पर यह सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे होते हैं, जबकि

0: भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है। इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्जन निज़ाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन को बिजली में बदल देती है, जिससे ये ट्रेन आगे बढ़ती है। इस अमल के जरिए सिर्फ पानी के बुखारात ज़िमनी पैदावार के तौर पर बनते हैं, जिसके नतीजे में ट्रेन चलने के दौरान कार्बन हरगिज खारिज नहीं होती। ये ट्रेन कई सतहों के हिफाजती निज़ाम से लैस है, जिसमें हाइड्रोजन लीक, गर्माई, शोलों और धुएं का पता लग जाता है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समंदरी इंतजामिया के डायरेक्टोरेट जनरल DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाज़ों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकाम जारी होने तक आबनाई हुरमुज से सफ़र कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खत्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाज़ों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खास तौर पर तनाज़े से मुतासरा इलाके में मल्लाहों और कमर्शियल जहाज़ों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों से तआवुन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज के खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और ये अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान कई अहम कवानीन को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदर जमहूरिया मोल्दोवा जाएंगी और अपनी हममनसब माया संधू के साथ मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसोर डान और रोमानिया के अबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुर, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कारिया के तौर पर हुई है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी के लोगों ने बुध को बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या GSP+ की आम की गई स्कीम के तहत तजारती फ़ायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली PV सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की सबक आलमी चैम्पियन नोजोमी ओकोहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर

0: international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक है, 2:15 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अपने से चंद फिल्मी नत में समझ कीजिए फिल्म पेंटर बाबू से ये गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में गीतकार मनोज कुमार मोस की तरतीब दी है उत्तम सिंह ने।

जब याद किसी की आती है। अब पेश है इस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के बोल मौसिकी से तरतीब दी है मदन मोहन ने।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे। दिन के अढ़ाई बज चुके हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये छह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर तो एफ एम 71.5 मेगा हर्सन पेट समीन वंच पे छकर तो रोफन कर जहूर अहमद गाबरू तो हम नवाई मनीष बुझ तुम कलामी शमस फ़कीर।

जय हिंद। फौज भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूँ आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म आरंभ से। ये प्यारा सा गीत मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में, साकिल अहमद के बोल, आनंद का मधुर संगीत।

जी दोस्तों, समाज कीजिए फिल्म आशा से टाइटल गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

दरअसल फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप DTSS और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाप्त कीजिए फिल्म बाबू से ये गीत, सुनोगे देवी लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में मुजरू के बोल, राधेश रोशन का मधुर संगीत।

जी दोस्त, आपने फिल्मी लुक यादा से खूबसूरत नगमा सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ों में। नगम निगार थे मजरू, उसकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला नगमा ने चुना है फिल्म दिल से मिले दिल से। ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, अमित खन्ना के बोल, बप्पी लहरी का मधुर संगीत।

आशिक हूँ बहारों का। अब पेश है इस फिल्म से गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के खूबसूरत आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

दो शिकारी। अब पेश है इस फिल्म से ये गीत, आशाताई की आवाज में, जानिसार अख्तर के बोल, चित्रराज का संगीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना, आपकी नजर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। गीत किशोर दा की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन पर चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत को रेलवे सेक्टर में शिफाफ और देरपा मोबिलिटी के हवाले से काफ़ी अहम माना जा रहा है। वज़ीरे आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपये लागत वाले कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि भारतीय रेलवे में पिछले 12 वर्षों के दौरान मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन गाड़ी की शुरुआत से जींद को एक खास मुकाम मिला है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी की शुरुआत को मुल्क की टेक्नोलॉजिकल तरक्की में एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया।
2: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जींद, कालका, मंडी, डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान वहां मौसूल होने वाले नजरानों और एहतियात के इंतजामी निजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नजरानों की वसूली, गिनती, हिसाब किताब, इसे महफूज रखने और इस्तेमाल के तमाम मराहल का जायजा लेते हुए शफाफियत, जवाबदेही और मयारी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया गया। इम्तहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नतायज का ऐलान किया है। इस इम्तहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालब इल्मों में से 11,21,000 तालब इल्मों को तिबी, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। इस इम्तहान में 138 तालब इल्मों ने 720 में से 690 से ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 तालब इल्म हादिया निसार और जैदान वानी शामिल हैं। हादिया निसार ने मुल्की सतह पर 99वां जबकि जैदान ने 124वां रैंक हासिल किया है। इन 2 तालब इल्मों ने अपनी इस अहम कामयाबी के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
3: इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वॉज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। आपसे हो सकता था यू शोड अप एंड ओन दैट, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। एवरीबडीज जर्नी इज यूनिक, यू कैन नॉट रेप्लीकेट एनी वन एल्सेस जर्नी। तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया एंड यू नीड टू कंटिन्यू दैट इफ यू हैव द पैशन टू।
4: बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अगर आपको नीट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे ही देना पड़ेगा और अगर आप थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में भी आऊँ।
0: वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान में कामयाब हुए तलबा बिलखसूस हादिया निसार और जैदान वानी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वज़ीर आलम ने कहा कि तलबा की ये कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और असातिज़ा व अफराद खाना की गैर मुतज़लज़ल तआवुन की अकासी करता है। वज़ीर आलम ने ये इम्तहान क्वालिफाई न करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो मजीद मेहनत करें और तवज्जो के साथ दूसरे इम्तहान में कामयाबी हासिल करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। तकनीकी तालीम के कुल हिंद काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के

0: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज का पहाड़ी प्रोग्राम केन कह मैं तो उसका मेज़बान जहांगीर अहमद खान अपने तमाम सुनने वाले को प्यार खलूस तज़ीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करदा ताई दी इस महफिल भी तुसा सारे दा खैर मकदम करदा सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखैर वाफियत हो सो अस्ती भी हमेशा ही दुआ आउंदी है कि अस्ते सामाइन जड़े अस्ते कदरदाइन हमेशा खुश त खुशहाल रहन सामीन अज जुमतुल मुबारक है हसबे दस्तूर त हसबे रिवायत अपनी अज दी महफिल दी शुरुआत हमद बारी ताला नाल त हमद बारी ताला पेश कर रहे हैं असगर अली कुरैशी
1: शुरू करा मैं ना अला थी जो सिफता

नफरत दे बजाय मोहब्बत और जंग दे बजाय अमन दा कार बन सके। तसामीन प्रोग्राम विच अगा पेश है तो सा वास्ते खूबसूरत गीत ता आवाज़ है अनायतुल्ला खान दी।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय 4:20 होने वाले हैं। आइए आप पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।
1: सामीम 4:20 हुए ए आकाशवाणी द श्रीनगर स्टेशन है। सैयद उमर मुख्तार को खबर सुनो। सब तो पहला खास खबर एक नज़र। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन हरियाणा रेलवे स्टेशन थ्यू हाइड्रोजन ते चलने वाली मुल्क दी पहली रेलगड्डी को झंडी दस के किया विद्या। नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नतज का ऐलान। 138 टॉपरस बिच जम्मू कश्मीर के 2 तलब इलम शामिल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी नाल जारी। 3.5 लाख थ्यों ज्यादा यात्रियों की पवित्र गुफा बिच हाजरी। तय मरकजी हुकूमत सुन पार्लियामेंट के मानसून इजलास थ्यों पहला इतारे को की सारिया सियासी पार्टियां।

0: समीर, आप आज का पंजाबी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीटर 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 5:45 हो चुके हैं। पेशे आज का गुजरी प्रोग्राम।

ਚੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ।

0: टमाटर बेचा किस तरह बेचारा ना चरंगे ले आए सोनी तरह नहीं चला सके
1: सोनी तरह यो कदम मने दो जी धरती में इसका पैर ही नहीं था लगे कल में दादी सोनी तरह क्यों पैसा भी चार दसा पर यो अगर तू मोटा मोटा दिन दसा तू
0: यो बड़ो नमक लाल है पाई नमक राम बदना कुछ चिर ते लगे गो तली वर सरी ना जमाओ पहला प्यार ना गल समझानी असर ना वे तो फिर एक अद अंगवा टुक छोड़नो देखो किस तरह मोह हो जाएगा।

0: के जामे मेरा कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा गुरु क्या पूछना चाहे तुम?
1: बस कुछ राज, नूरा का राज। मारो राजदार बन जा, मालो माल कर छोड़ूंगा।
0: मेरो माल लुगवा खान जी, माल लुगवा मेरो तावल करो। क्या सुर आ गए ये गुजरात, मेरी अकल तू बार है।
1: बस तू इतनी गल दा छोड़, जे नूरो हथियार कित रखे, नाले रात सोवे कित है
0: ना। मिना मिना को मिना कोई पता नहीं, ओम बचारो ओम बचारो मां जी। मिना मिना क्या पता हो सके, कदे कदे मुकदम ना पता लगो ना
1: ना दस्यो ते मार हम भी छोड़ांगा। वर सिरू नहीं, एक दो अंगवा कन्नी कर छोड़ांगा, फिर प्यो तारक छीटतो रहिए। हां जे गल सही सही दसागो ते सुनांगा, कंगन दियूंगा तिना ते नाले पूता नु अपने नाल रखूंगा।
0: तुम ना अल्लाह को वास्तु है, मिनु मिनु छोड़ दियो। मेरे कुछ नहीं जानतो, मिन्ना गरीब टाला मार गया तुमना तुमना केलो बागो।
1: सकून तिन्ना मार गया, सकून लबेगो। कुत्ता तेरी रत लीके, ते लुद्दी तेरा मांस खरून देंगी। कदे मारो पेतू बनेगो ते उद मुकद्दम गया रह गया भी हम तिन्ना राज करवावांगा। मुकद्दम ते बाद तू ही मालक बनेगो, ते मारो साकदार भी बनेगो।
0: तुम किदा मेरी मेरी मेरी चुगली दा नहीं करेगा? यो जानो यो शरीफ खान मुकदम ना कह छोड़ा को, मेरा बस क्या टूट
2: जाएगा। आए तो बा, हम निमक रामी नहीं कर सकता, तेरो राज राज ही रहेगो, पर मारी मदद करता रही है।
0: अच्छा अच्छा खान जी, खान साहब फिर मेरा ध्यान रखियो, तब मेरो अपनी जुबान को भी ख्याल रखियो।
1: हाँ हम जुबान का पक्का, तू दस। शाबाश, तू दस।
0: ओ जी मुकदम नूरो अपनो ते गो किली नाल टंग है रखे, ते आप उकन गए एट कांडा नाल बनाई हुई टंगी वरसो है। मुकदम अपनी तलवार ते ढाल सराने रखे, नाले टंगी गए एट मैं तो छोटो पत के रखे।
1: शाबाश, खोल दे रे हाथ पैर, हुन यो मारो संगी है। मिठा तू न अंधेरा अंधेरा मुड़ जा, तां जे किसी ना तेरो पतो ना लगे।
0: अच्छा जी चलो, पर खान साहब मेरो ध्यान रखिए, पड़ी हेर जान फंस गई है, चाऊं तो लक टूटे, छोड़ू तो सिर जिते जाए।
1: ना जने तू जा, तेरी मुंडी की खबर हूं आपे रखूंगो। हूं दसूंगो नूरा ना, सोफी नाल टक्कर लै थो, हूं तो उसकी बांडी उजाड़ गई छोड़ूंगो। मिन्ना भी लोग सोफी के

0: अस्सलाम वालेकुम मैरी जी।
1: वालेकुम सलाम। सूफी आज कितनी तैयारी है?
0: तैयारी तैयारी क्या करनी है मैरी जी, किधर काम गया हुआ था, सोचो थारी खैर खबर पूछ तो जाऊं। जरा खुद मंगवा दियो, दाढ़ी तलब लगी हुई।
1: तलब वह अपनो हुक्को ना रखा कर सूफी, इस रूपा की नार वाला चांदी का हुक्का ना मुकदम नूर हो तो उसको पाई कुशाल छिके, तेरी के मजार है जे तू इस नाल झूठो का छोड़ा।
0: अच्छा मैरी जी, लस्सी को छन्नो प्याल छोड़ो।
1: दंद किसरा पलिया रहा है, मुकदम का सोना का छन्ना मत इना लस्सी प्यालो। हूं तो इसना चांदी का सिरपोश नाल टक के रखूंगा, तू के मारा पांडा जूठा करना आया इत। मुकदमा की बराबरी नहीं करता सूफी, शमला उच्चा रखने नाल सारा मुकदम नहीं बन जाता।
0: बस मेरी बस, हुन और बेइज्जती नहीं सहन होसी, हूं दे हाथ हट बैठो, पर तमने भी पली सखावत दसी है।
1: मंगन वास्ते पांडो नाल रखा कर सूफी, रही सखावत की गल ते खैरा तेरा जिसा जमींदारा बनी लगती, अपना अंदर की मैल ना साफ कर छोड़ खान, फिर देख मेरी बुक पार पार कर तेरी चोली पार छोड़ेगी।
0: हो गदागर नहीं मेरी, हूं राह लौड़ तो आगे तो फिर आऊंगो।
1: हां हां, पहला अपना कारगो ता राह लौड़, नूरा की बराबरी करा।

0: अस्सलाम वालेकुम अम्मा।
1: वालेकुम सलाम। आज भी के ताय कचहरी थी?
0: ओ माए, चुफेरी जित नाग उकड़िया वा में उत कुछ न कुछ आलजुल तक करनी वे। खैर इतने नहीं आयो कोई?
1: आयो थो वो सूफी उको तो लस्सी मंगे थो।
0: फिर दितो को तमने
1: चुल्ला की तत्ती दिती वो किसे चाल वर आयो थो। मैं भी चंगी खोरी सुनाई उसकूलों के उको ते पांडा जूठा कराना था।
0: ओ माए तपिया ने और नहीं तो पाता कदे उको मंगियो थो ते चिलम दे छुनके छा मंगी थी ते दूध काड़ के देनो थो।
1: सपा ना दूध पिलाण नाल कोई फायदो नहीं होते बच्चा, ये ते वे चूहा है जेड़ा करा मा बढ़ गया नी खोखली कर छो।
0: ऊपर कार आया ना बेइज्जत करनो में ते ठीक नहीं होतो, तुस्कती आग ना फूक मारन नाल वा और पड़ गए जिसने बुझाता बुझाता कदे कदे अपना हाथ पैर भी लूसे जाए।
1: मीना तेरी गल की समझ नहीं आती, पता नहीं के बुजारत सत्तर है।
0: बुजारत नहीं माए सच को सच, पख्ती भर पानी त्रौकन नाल ठंडियार हो जाए ते कई कीड़ा मकोड़ा ते चिड़ी पतिंगा की जान बच जाए।
1: तेरी के मर्जी है, पतिंगा ना बचाने वास्ते हूँ दियो बुझा छोड़ो? नहीं हरगिज नहीं, जिसकी जड़ी थाई वो उत्ते बैस है।
0: वर सूफी ते लंगी बांडी पर बैसना चाहे
1: बड़ी वरु फेंक छोड़िए, मुकदमा को प्यार तक है उसने अजा लहर नहीं तकी।
0: अच्छा छोड़ अम्मा, जो अल्लाह की रजा कोई खान पीन को बंदोबस्त है?
1: क्यों मुकदमा है कार किसी चीज की कमी है? ताजा मक्खन नाल मक की रोटी चौपड़ गया सजरी कनी छा उन्हें तोड़ूंगी, तू ही अपना हथियार हथियार पर ला कर रख।
0: ओ बलियार करियो डाडी भूख लगी हुई है।
1: अच्छा
0: ये तेग तलवार ना में तो इस बस्ती में इंसाफ कित वैगो पगियार रातों रात निंगल नहीं जा सी।

0: कौन है रे भाई इतने आधी रात ना?
1: हुआ जी मंगतू पीरो जाल।
0: तेरी आवाज में क्यों हो गया है? आधी रात में क्या लेना आयो है? खैर तो है ना?
1: ओ जी पुंछ शहर गए वो तो रास्ता में शाम हो गई है ते हुन चलन की भी ताकत नहीं रही मुकद्दम जी ते सोचो थारा ही आराम कर लियो।
0: मिठिया ओ मिठिया ये गल कोड़ा बेच के सो गया मिठिया
2: क्या मामा
0: दौड़ से रूड़ो पट बार मंगतू पीरो जाल खड़ो है।
3: मेरा मामा मिन डाडो ताप चढ़ी भी है आए आए उठन की सकत नहीं आए अड्डी अड्डी टूट रही है मामा आए
0: रेमत बानो रेमत बानो
4: जी अब्बा
0: उठ बच्चा तू पेट खोल तेरो चाचो मंगतू बाहर खड़ो है।
4: अच्छा बाबू मैं देखूँ इस चाचा मंगता ना रात भी नहीं आराम लगतो दिहाड़ी रात चलतो रहे। मेरे अल्लाह ये मुझ सारे ये घूमे या मेरे अल्लाह खैर करिए मेरे अल्लाह।
0: रहमत बानो ओ रहमत बानो पेट खोले हुए
4: ओ अब्बा अब्बा बार मुझ सारा जने मुझे कुछ खैर नहीं लगती चाचो मुझे तो भी नहीं है ये कोई और है। मिठिया भाई ओ मिठिया भाई ना खोलिए बेद ना खोल ना तेने क्यों ना खोल अब्बा ऐसा ढको ना तेने क्यों ना ना खोल ओ अब्बा तो मुगल बच्चो निकल जाओ
5: कितना नूरो आज 150 गात आज से बंदी मा तेरी कमर बनाऊंगो डंगिया वर्ष हो इन्ना आप मु आज डंगी वर चढ़ो
6: और ऊपर होशियार जा रहे
5: दो चार जना तार वर चढ़ जाओ

0: खबरदार सोफी, तेरी दुश्मनी मेरे नाल है। मांग दुध पियो है दत्ता, तेरी बार खुला मैदान नाल मार लीजिए। चोरन डाकुआर धोखा तो नाल कर्म आ गए, मर्दानगी ना दस। एक मेरा बाल बच्चे है सोफी, खबरदार।
1: और बोल जा बाल बच्चा ना, और तेरी खेड खत्म है।
0: मिठिया अब बिंदा ना खोल रहे, मेरी तलवार कितना मिठिया, मेरा तेगो कितना रे। नमक रामा तू किधर, अपना खून ना भूलता नहीं क्या रे?
2: मामा हूं पहला गूं दो या हिलांगी बांडी का है शामत जाएगी। आज आ गई ना शामत, हूं हम बेकसूर मारे गया। वो मैं तो मामा, वो मैं तो बदे हुई है। थारा थियार में डंकी बरू ला गया, कुठार पर तार छोड़ा भी है। मिना के पता तो इस चांदनी रात में अनाज बन ला सकी।
0: ओ नमक रामा, ये तेरा सका नहीं होने लगा रे। ओ मुर्दार, ये मुर्दार खा गए बड़ो जुलम किया रे।
3: हाय रे, तो खोला छोड़ा
2: मारे गया रे, आज मारे गया।
1: डंगी मत सुना तो सपरे जंग बाजे डंगी इसकी।
2: मार जे रे, तो खामोल
1: दस सुन अपनी मर्दान की। बड़ा मान था तिन्ना अपनी ताकत है। मारो अपनी मुकदमी दस।
4: मारो मेरा अब्बा ना, नहीं मारो, हाय ना मारो मेरा अब्बा ना।
1: बतो इसके गिटारे रस्ता ले रखो।
0: ओ मिठो, ओ मिठो, मिठो ना मारियो। मेरा मेरा मेरे चाचा, ओ मिठो मिठो ना मार।
4: हम ये बांडी भी तमन दे देंगे, आई ना मारो मेरा अब्बा मुकदम ना ना मारो।
1: बाहर ले आओ ना, तो बोलो इसका जवाब।
2: मेरा कुछ ना काम आयो,
4: मेरा बाबल ना सेली ना ना बदो। आई मेरा बाबल ना नहीं सेली ना बदो। हाय मेरा बाबल, हाय मेरा बाबल की टंगा पर सैली का बाल चुभेगा। है ना मारो मेरा अब्बा ना, ना ना बदो। आई क्यों ध्रुवे लगावा ना बदो, ना बदो
1: प्रमाण बने हुए। और सत मुंडी और सत पड़ा बोला यो
2: ई मेरो है कोई तरह
4: बदो। ना ना बदो, आई क्यों ध्रुवे लगावा ना बदो, ना बदो।
5: तलवार तेरी रात ना सहक रही है सोफी।
6: जंगबाज, ओ शरीफ खान, ओ इस्लाम, इसके शाल ना थमो। ओ भाइयों तुम्हारा क्यों हो गया है? ए, ए, ए, नसीये ना भाइयो, मुकाबलो करो मुकाबलो। अरे की है नसरी?
5: नसर नहीं दस्तु सोफी, धरती के ठू कर ले हमको। मेरा वीर ना तो खुद देगा कत्ल कियो। अरे तुमने मर दोता, मर दोता ते बंगार घर रड़े मैदान मुकाबलो करता है। ओ साजिश यो धोखे बाजो, कौन पीछे तो वार कियो तो उन सीना वरखाओ, उन्हीं के गिरदा तो पियोगो।
6: कुशाल, ओ कुशाल ना मारिए ना, देख देख सलाच भाई कर लेगा। उड़ जानो परुगो, तेरी हर शर्त मनू, मिन्ना माफ कर छोड़। और भूल गया तो, और मेरी अकल पर पत्थर पे आ गया था।
5: तेरी अकल हूँ ठिकाने लाऊंगो, और मुकदम नूरो इकलो ही पूरा गांव वास्ते काफी थो। ओ जालमो, रात ना धार सट गए, धोखा नाल कत्ल कर गए, मर्दान की दसल लगा था।
6: अब मुकदम मुकदम वो लोग गला लगा गए तो यार, सारी जमीन तू रख, मेरो सब कुछ तेरो।

0: कुछ मुकदम नूरा का छत्तर भी पारा ही थारावर तू बचा गो तो कुछ दे गो ना
1: ना ना ना ना ना खुशाल तलवार की ना मारी तिन्ना वास्तु है इसने भी यार माँ वो पूरी नार पे है मजा कर लूँगा मिन्ना बाप का छोड़
0: नार वाले करेगो आहा उन मेरा सीना मत ठंड पे ही है तिन्ना किसरा बख्श तो सोफी ही तैते तैते मेरे काल जो चीर गए बलती अग मत लो छोड़ो है ऊ मुकदम नूरा गो दुख किसरा पुलो जीते जी यो सारो कदे मुझसे या धरती क्यों नहीं फट गई उस वेले या अल्लाह ए अल्लाह
2: चाचा ओ चाचा चाचा दोपहर हो गई है उठो उठो ना कोई भी इतनी देर कोई नहीं इतने हो
1: बानू बच्चा इन लंगा मसाई नहीं रहे हो।

0: Ey Allah!
1: चाचा, ओ चाचा, चाचा तो पैर हो गई है, उठो उठो ना, कोई नियत नहीं रहे, कोई नियत रहे हो।
0: बानू बच्चा, इन नंगा मस्सा ही नहीं रहे हो, तेरा बाप के नाल सब कुछ मुग्यो बच्चा, वो मिठो की तय, उसना, उसका मांस ना लून लागे, चूल्हा गड्ढा ना सेकूंगो, नमक हराम है वो, नमक हराम है।
1: चाचू वो मैसा ही मई है, सारी ही मैस रोवे लगी, उनकी अखा तो पानी की नाड़ी चले लगी हुई।
0: हाय हाय अफसोस, इंसान ते इंसान, हैवान भी मुकदम नूरा गोयो, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाड़ो की ओर मिठिया, तेरी गोर इससे बांडी मां बनाऊंगो, इससे बांडी मां बनाऊंगो।
1: उन उठो ना चाचू, चाचू उठो, उन आथरो पूछ लियो आथरो, वे देखो ग्रांड सारा लोग कठा आया हुई, उठो, उठो चाचू।
0: हाँ, हाँ बच्चा, चल, चल ले चल मिन्ना, मिन्ना ले चल मेरा बच्चो।
2: ओ मिठिया, मिठिया
3: जी जी, क्या क्या मामा, क्या
2: या मेरा कोला, मैसा ना लून सटे हो है, इनको रिंगाड़ बंद कर, नहीं ते तेरी आवाज हूं बंद कर छोड़ूंगो।
3: मामा ना मारिए, ना मारिए।
2: ओ जालमा, जिस थाली में खादो उसे ना मकरू कर छोड़ियो, तैं ते सारी गोरसाई ना यतीम बना छोड़ियो, के काटो तो तिनाइत, तेरी अखा मां दूध रात को लिहाज भी नहीं रहो।
3: ना ना मारियो, मामा के साल ना मारियो,
0: ना मारियो भी ना मारियो।
2: हाँ, तिन्ना छोड़ दियो, जिसने पगियाड़ ते जंगी दो बात छोड़िया, जिसने मुकदम का अचार छुपा छोड़िया, तिन्ना बख्श दियो, जिसने मैं दो बात छोड़ियो, जिसने दुश्मना नाल रल गए, गोरसाई को ताज डुबो छोड़ियो, देख पूरी गोरसाई मातम में डूबी हुई है। पूछ पूछ इस रहमत खातून को, लू मौत को दर्द किसो है, उन उन या तलवार सारा साड़ मुकावेगी।
3: मामा के साल ना मारियो,
0: ना मारियो बिना, ना मारियो, ना मारियो। आज आज आज की माफी, सारी उम्र पैर धोगा पियूंगो, ओ सारो उम्र पर अजान मंद रहूंगो, ना मारियो।
3: तलवार, तलवार की ना ना ना।

जी, तुम सुन रहे था ड्रामो नूरागी तीजी किस्त। तो इस तरह यो ड्रामो मुकम्मल हो गए। अगर फिर कदे जरूर थारी फरमाइश होती तो हम जरूर चलाता रंगा इसना। हमारी कोशिश है कि रंगा रंग प्रोग्राम बना गए और हमारा को जो अदबी जखीरो मौजूद है इत हमारा स्टूडियोज की लाइब्रेरी में आर्काइव्स में वो कट कट के हम तुम्हारा पुरानी याद ताज़ा करता रहा। तो थारी खूबसूरत समाता ना और खूबसूरत बनाता रहा।

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुकन आवे। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान डॉक्टर अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात तोड़ी बख्शो इजाजत। चलांज फिर, रब रखो।

समीन आप आज का गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप गोजरी में खबरें सुनेंगे।

0: लागत कम कैसे उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इस मौके पर रेलवेज का वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन रेल गड्डी की शुरुआत ना मुल्क की टेक्नोलॉजी का तरक्की में एक तारीखी पेशरफ्त करार दी। तो
0: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है, 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जींद, कालका, मंडी, डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
1: लखनऊ गोविंद मनोहर सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा का बेहतर इनकार ते बड़ी तादाद में यात्रियों की गुफा पर हाजिरी देना इंतहाई खुश आइंद करार दी। तो है एलजी ने आज यात्रा का पहलगाम नूनवन बेस कैंप को दौरा कर गए उत श्रद्धालुओं ने फराहम की जा रही सहूलियात को जायजा लियो। आला अफसरों के नाल एक मीटिंग के दौरान मनोहर सिन्हा ने बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी बारे तफसीलात तलब की। यात्रा बारे अपना ख्याल इजहार करते हुए एलजी ने क्यों
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग सबने मिलकर के मैं ये पांचवी यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया है और जो फीडबैक यात्रियों से मिला है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की जिसमें कहा कि नहीं लोकल प्रोडक्ट भी जो श्रद्धालु आवे देश भर से खरीदे, उसके कारण मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या बाकी चीजों की खरीद भी काफी श्रद्धालुओं ने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाए।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा चंगे तरीके जारी है ते हुन तक 3.5 लाख तो ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है। आज पेशी 4 बजे तक मजीद 15527 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। इसी दौरान आज जम्मू का भगवती नगर का बुनियादी कैंप ते 4659 यात्रियों और मुश्तमल 16 जत्थो वादी पहुंच गए। दर्शन करने आला यात्रियों विचू मुझ सारा अपना अपना कराना मुड़ गया है। यात्री ईद की खूबसूरती ते मेहमान नवाजी ते यात्रा का हवाला ना सलामती समेत किया गया तमाम इंतजाम तो काफी मुतमयन नजर आ रहा है। इस बारे कई यात्रियों ने मारा अंतनाग का नुमाइंदा तसदक रशीद के नाल गल करता हुआ क्यों
3: बिहार से यात्रा बहुत अच्छी लगी। बस यही है कि बाबा हमेशा बुलाए, हर साल आते रहे यहाँ पे। सुविधा 17 से अच्छा है।
4: गिरधर सोनकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छी यात्रा है। हम यहाँ हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है, हम 3 दिन पहले से निकले यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे बाबा अरफानी।
5: मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और राज्यपाल को मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को कि उसने बहुत ही बेहतरीन सुविधा की है और इतने मस्त व्यक्ति है कि भगवती नगर बेस कैंप में थे तो उन्होंने स्वयं आकर जायजा लिया और हमसे बात की।
1: अंतांतु मुतलक एजेंसी एनटीए ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का नतीजा ऐलान किया है। इस इम्तहान में शामिल होया तकरीबन 20 लाख तालिबे इल्मों विचों 11,21,000 तालिबे इल्मों ने तिबी, डेंटल, आयुष ते दूजा जुड़े प्रोग्रामों में दाखला वास्ते कामयाब करार दितो गयो है। इस इम्तहान में 138 तालिबे इल्मों ने 720 विचों 690 तो ज्यादा नंबर हासिल किया है। इन भी जम्मू कश्मीर नाल तलक रखने वाला 2 तालिबे इल्म हादिया निसार ते जैदान वानी शामिल है। हादिया निसार ने मुखी सतह पर 99 जबकि जैदान ने 124वां रैंक हासिल किया है। इन 2 तालिबे इल्मों ने अपनी इस अहम कामयाबी बारे मारा नुमाइंदा सोहेल भट्ट के नाल गल करते हुए अपना तासरात अजार इस तरह कियो।
6: इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वॉज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन।

0: I think don't overburden yourself. आपसे हो सकता था you showed up and own that. Be proud of your journey. Everybody's journey is unique. You cannot replicate anyone else's journey. तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया and you need to continue that if you have the passion to.
1: बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत excited भी हूँ मैं. अगर आपको नीट है किसी भी competitive exam में successful होना है सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा focus को concept पे ही देना पड़ेगा और अगर आप थोड़ी बहुत consistency maintain कर तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में भी आऊँ.
2: वजीर आला अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर नाल तालक रखने वाला नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान में कामयाब होया तालिबे इल्म खासकर हादिया निसार ते जैदान वानी ने मुबारकबाद दी है. एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा जे तालिबे इल्म की यह कामयाबी उनकी मेहनत लगन ते असातिज़ा ते कार आलांगा तामन की अकासी करे. वज़ीर आला ने यह इम्तहान क्वालिफाई न करने वाला तालिबे इल्म की हौसला अफजाई करता में कहा जे वे मजीद मेहनत करें ते ध्यान के नाल दूजा इम्तहान में कामयाबी हासिल करें. इतलातुन तालुकात आमा महकमा में कई अफसरान का तबादला अमल में आने गया है. इस सिलसिला में जारी एक हुक्मनामा के मुताबिक लियाकत अली मीर ना डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर बड़गाम का ओहदा पर तैनात किया गया है. शौकत हुसैन गनाई कुलगाम का नवा जिला इंफॉर्मेशन अफसर रहेगा. शबीर अहमद बाटना फील्ड पब्लिसिटी अफसर कश्मीर मुकर्र किया गया है. इसी तरह अवैस मंजूर गोरखू बांडीपुरा का डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर रहेगा. हुक्मनामे के मुताबिक कुल 17 अफसरों की तब्दीली तैनाती अमल में आनी गई है. मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट का आने वाला मानसून अजलास तो पहला 19 जुलाई अतार ना सियासी पार्टियों का फ्लावर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है. मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट का दुआ ऐवाना की कार्रवाई चंगे तरीके चलाएगी. सियासी पार्टियां तो तामन तलब करेगी. याद रह जाए पार्लियामेंट को मानसून अजलास चलता महीने की 20 तारीख तो शुरू होगा 13 अगस्त न मुकेगो. इस अजलास के दौरान बहस ते मंजूरी वास्ते मुतद्दद बिल ते कानून आने जाएगा. खुराक सिविल सप्लाईज ते अमूर सार्फीन का वजीर सतेश शर्मा ने आज छम हल्का में 10 करोड़ रुपया लागत वाला तरकैती प्रोजेक्ट व्यवस्था की. इसके नाले गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो जो इजाजत राब रखो.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है. उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
4: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
3: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया. उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की

0: आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभी
2: श्यामचे शेवजत 5 मिनट सब्दे पेशू प्रोग्राम गबी बाय निखत्रा।

خوش روی چانی خویس گل گئی معطر یا رسول گاہے تلک

اب گاہے ژیت ہاوک بخاب روئے منور یا رسول.

0: 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: अथ दौरान कर वजीर अजमन पत चंडी गढ़ में 4.7 करोड़ रुपये हंद लागत वल कहिया तरक्की प्रोजेक्ट कुमकिन वक्फ इन प्रोजेक्टन तालुक तबी वशदाश तलीम तो सड़क रबत हिवन शोबन स।

0: बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: अथ दौरान कर वजीर अजमन पत चंडी गढ़ में चोर सा सत करोड़ रोपये हंद लागत वल कहिया तरक्की प्रोजेक्ट कुम के नाव वक्फ इन प्रोजेक्टन हंद तालुक तबी वशदाश तलीम तो सड़क रबत हिवन शोबन सौकस पे दुत रेलवे हंद मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भारत गोडनिश हाइड्रोजन रेल गाड़ शुरू कर मुल्क टेक्नोलॉजिकल तरक्की हंद बाप अख तारीखी कदम करार।
2: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जिंद, कालका, मंडी, डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सपदन मालडोवा नॉर्थ मैसीडोनिया तो रोमानिया के सत्रन दुहन सरकारी दौरे बापत 19 जुलाई रवाना। 19 जुलाई सपद सदर जमहूरिया मालडोवा रवाना तो कर पन्नस हम मनसब मया संडूस सपद सदर कतबात दौर किस दुमस मरहल में सपदन तम 21 जुलाई जनूबी मैसीडोनिया रवाना ये जन 23 जुलाई तम रोमानियों को दौर कर। मरकजी सरकार पार्लियामेंट के वहरज इजलास गोड़ 19 जुलाई आथवार दो सियासी पार्टी हंद फ्लोर लीडरन अख मीटिंग तलब कर मीटिंग दौरान यी सरकार तरफ दुश्मनी ऐवान मं कारवाई रित पे चलान बाप सियासी पार्टियन अथवास मंगने तह पा सत पार्लियामेंट वहरज इजलास सपद यम रतन वहम तारीख पे शुरू तो वा त्रवि अगस्त अंत अत इजलास दौरान इन बहस तो मंजूरी बाप कहिया बिल तो कानून पेश कर। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में इंसानी हकूकन हंदिस सूरत हाल पे सख्त तशवीश बोमुत तमो खबरदार कर्मुत तरजीहत पलस या जी एस पी पलस तरफ आम कर आम स्कीम तहत तजारती फायदन तान पाकिस्तान लगातार 2017 पे नजरसानी कर आमति जी एस पी फ्रेम वर्कस तहत बैन अवी वादन पे अमकिस अमल दरहदस पे मुनसर रूदमुत रिपोर्ट्स में हाल कि आयनी तरमीमन पे तशवीश बहना आमुत। यूरोपीय यूनियन यह वोमुत अकलीतन खिलाफ नफरती जुर्मन पे अदालती कार्रवाई माज महदूद कर आम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी यात्रा रित पे मुनद सपदन तो भारत इदारस मं यात्रियों गोपि हाजिरी दिन खुश आइंद करार दुत एल जी एन कुर आज यात्रा किस पहलगाम के नुनवन बेस कैंप दौर तो हूं तत् यात्रियों फराम कर सहूलियतन हूं जायज अत दौरान कर तमो अकस मीटिंग दौरान भारीपाई अफसर निश बुनियादी सहूलियतन हज दस्तियाबी मुतलिक तफसील तलब यात्राएं मुतलिक पन्न ख्याल दुन इजहार करान वन मनोज सिन्हा।
3: कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग सबने मिलकर के मैं ये पांचवी यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया और जो फीडबैक यात्रियों से मिला है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सब सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की जिसमें कहा कि नहीं लोकल प्रोडक्ट भी जो श्रद्धालु आवे देश भर से खरीदें, उसके कारण मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या बाकी चीजों की खरीद भी काफी श्रद्धालुओं ने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाए।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा रित पे जारी तो वनुक तमाम कोर 3.5 लाख खुद ज्यादा यात्रियों पवित्र गुफ हूं दर्शन आज दिगर से 4 बजे तान दिस मजीद 15,577 यात्रियों पवित्र गुफ मज हाजिरी हपड़ आज जमे भगवती नगर की बुनियादी कम पे 4,750 यात्रियों पर मुश्तम शुरूम चौक वादी गुन दर्शन करने वाले यात्रियों में बेशतर यात्री पन्न घर वातम यात्री ये खूबसूरती मेहमान नवाजी तो यात्रा हवाले कर आमत सलामती सान तमाम इंतजाम सफी मुतमिन लबान अम हवाल कर कहो यात्रियों सनत नाग किस नुमाइंद सम आई कत बात।
4: बिहार से यात्रा बहुत अच्छी लगी, बस यही।

0: कि बाबा हमेशा बुलाए, हर साल आते रहे यहाँ पे, सुविधा सब तरह से अच्छा है।
1: गिरधर सोनकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छी यात्रा है, भैया हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है, हम 3 दिन पहले से निकले यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे बाबा अरफानी।
2: मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और राज्यपाल को मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को कि उसने बहुत ही बेहतरीन सुविधा की है और इतने मस्त व्यक्ति है कि भगवती नगर बेस कैंप में थे तो उन्होंने स्वयं आकर जायजा लिया और हमसे बात की।
3: खबरों श्रोते आकाश वाणी प्रबोधन इम्तिहान मुतलिक कौमी एजेंसी NTAN नीट अंडर ग्रेजुएट जतवु कैन नतीजन ऐलान कर्मुत अत इम्तिहान मज शामिल अलपल वहो लछो तलब इलमो मज गई कालच अकवु सास तलब इलम तबी डेंटल आयुष तो दोमिन प्रोग्राम मज दाखिल निनस मज कामयाब अत इम्तिहान मज अकत अरतहु तलब इलमो मज सत वहो मज शहत नमत खुद ज्याद नंबर हासिल करमित इन जम्मू कश्मीर सल्लुक तवल जालब इलम हादिया निसार तो जहरान वानी तामिल हादिया निसारन मुल्क सुथरस पे नमन तो यहां जहरान अखत सोहिम रैंक हासिल करम यमो दशवियो तलब इलमो कर्स नुमाइंद सोहेल बटस सत वन।
4: इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वॉज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, आपसे हो सकता था यू शोड अप एंड ओन दैट, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। एवरीबडीज जर्नी इज यूनिक, यू कैन नॉट रेप्लीकेट एनी वन एल्सेज जर्नी। तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया एंड यू नीड टू कंटिन्यू दैट इफ यू हैव द पैशन टू।
5: बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अगर आपको नीट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा फोकस को कॉन्सेप्ट पे ही देना पड़ेगा और अगर आप थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में भी आऊँ।
3: जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक थावन वाले नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में कामयाब सपदमित तलब इलम खसूसी तौर हादिया निसार जैदान वनस मुबारक कर्मुत अकिस पैगामस मन वजीर आला तलब इलम कामयाबी तिज मेहनत लगन तो वस्तादन तो घरबोस हिंद अथ रटिच अकासी करान वजीर आलान ये इम्तिहान क्वालिफाई न कर वाले तलब इलम हौसला अफजाई करान वो जम ग मजीद मेहनत करें तो जोन दिथ दूमि लटी इम्तिहान पास करें। तकनीकी तलीम हंद कुल हिंद कौंसिल कर जम्मू कश्मीर कैन तलब इलम बापत तलीमी सेशन जतवु जतवु बापत खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम तहत रजिस्ट्रेशन तो कौंसलिंग हज अमल शुरू ये मकसद पाने बापत जम्मू कश्मीर वजीर आला तलीम हंद महकमन AICTE पूर कर बापत खत मन तलब इलम कागजन हज परखाई बापत सहूलियती मरकज कायम कर हिदायत दिखम कौंसल अक नोटिफिकेशन मुताबिक रजिस्ट्रेशन तो कौंसलिंग बापत ऑनलाइन पोर्टल रात पे शुरू कर आमुत खुराक सिविल सप्लाईज तो सर्फन हंद जम्मू कश्मीर उमूर हंद वजीर सतीश शर्मा कोर आज छंब हल्कस मज 10 करोड़ रुपये हंद लागत वाले तरकती प्रोजेक्ट इफ्तिताह अत मौक पे वो तमो मौजूद सरकार जम्मू कश्मीर किस प्रत इलाक मज तरकती अमल मसवी बुनियाजन पे पोशर दिन बापत वादबंद। जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी अटल डुलवन हूं आज श्रीनगर अकिस मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर मज बुनियादी ढांचे तो अवामी खजमतन हंदिस शोबस मज निजी सरमाकारी कुन रब कर बापत प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग महकम तरफ तैयार कर आमतिस अबूरी दस्तावेज किस खदोखालस जायज चीफ सेक्रेटरी दूत मुजवज पालसी हंज असरदार अमर आवरी हंद बापत इधार जहती निजाम कायम कर जरूरत पे जोर युत सरमाकार आम लूक हंदिस एतमाद मज हुर कर मुल्क सारे खुद बोड़ ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स जतवु वो आज नव दिल मंद अत दोन हज नुमाइश दौरान सपद टेक्सटाइल के शोबस मज बवी शराकदारी कारबार तो सरमाकारी पोचर दिनस तो अम शोब खसूलियबी हंज अकासी बापत प्लेटफार्म मैसर जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन آرگنائزیشن تہ وتلگ ات موقع پہ جموں کشمیر ہینڈلوم تو اتھ کامن ہز

0: अपन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 9018074333।
3: 9018074333।
4: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
5: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी।
7: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
10: शर्वीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सेमिनार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिंद जंक्शन से सोनीपत के लिए मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली इस मुसाफिर ट्रेन में एक वक्त में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजारत रेलवे के मुताबिक 10 डिब्बों पर मुश्तमिल यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियावी अमल से बिजली पैदा करके चलती है और इसे सिर्फ आबी बुखारात खारिज होते हैं। यह ट्रेन मुल्क के नेट जीरो इखराज के हदफ के हुसूल और हयातियाती ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर इनिसार कम करने की समत एक अहम कदम करार दी जा रही है। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। हरियाणा के जींद इलाके में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की तरक्की सिर्फ इस शहर तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के आवाम को भी बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ऐलान किया कि चंडीगढ़ में नए MBBS कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही वहां तदरीस का अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ तालीम, तहकीक और इख्तिरा का एक अहम मरकज बनता जा रहा है। मौसूफ ने मजीद कहा कि IT सिटी ग्रीनफील्ड रोड पर प्रोजेक्ट से मोहाली और खुर्द में ट्रैफिक जैम के मसले में कमी आएगी, जबकि अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे इलाके के राबते को मजीद मजबूत बनाएगा। उन्होंने जींद से शुरू होने वाली मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जदीद और साफ सुथरे नकलो हमल के निजाम की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रास्ते पर वाके नुनवन बेस कैंप का मुफस्सल दौरा किया और यात्रा से मुतालिक तमाम इंतजाम और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर IGP कश्मीर VK बिरधी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, पहलगाम यात्रा रास्ते के नोडल ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी, DIG साउथ कश्मीर रेंज जावेद इकबाल मत्तू, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉ बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरे, कैंप डायरेक्टरों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यात्रा इंतजाम, सिक्योरिटी बंदोबस्त, यात्री सहूलियात और दीगर इंतजामी तैयारियों के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग दी। मनोज सिन्हा ने यात्रा से वाबस्ता तमाम महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल, हम आहंगी और मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिक हुकाम को हिदायत दी कि श्रद्धालुओं को बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के साथ साथ यात्रा के पुरअमन, महफूज और खुशगवार इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। दरअसल आज अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में 4600 से ज्यादा यात्रियों का एक नया काफिला भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से नुनवन और बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में बालतल के लिए 1626 और पहलगाम के लिए 3014 यात्रियों शामिल हैं, जो कसीर सतही हिफाजती इंतजाम के तहत रवाना हुए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वो सिर्फ तस्दीकशुदा रजिस्ट्रेशन और यात्रा की मुकर्रर तारीख पर ही सफर करें, क्योंकि किसी भी गैर रजिस्टर्ड यात्री को बेस कैंपों की तरफ बढ़ने की इजाजत

0: नहीं दी जाएगी। अब एक और मौजू, राजौरी जिले में गुज़श्ता रोज से जारी मूसलाधार और शदीद बारिश ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। बारिश के बाद शहर और देही इलाकों की मुतअद्दिद सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में अलबत्त राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि जिले में मुतअद्दिद छोटी बड़ी सड़कें, यहां तक कि गली कूचे भी अरसे दराज से मरम्मत तलब हैं। मुतल्लिका आबादी अब तक कई बार मुतालबा करती रही है कि सड़कों की बिगड़ी संवारने के इकदाम किए जाएं और लोगों की पुकार यूं लगता है ज्यादा दूर नहीं जा पाती है। यही वजह है कि हुकाम इस सूरत हाल से बाखबर होने के बावजूद मानी खेज खामोशी और बेहिसी का मुजाहिरा करते हैं। तफसीलात के साथ खुद आरिफ कुरैशी।
1: राजौरी कस्बे को जोड़ने वाली मतदद सड़कों की हस्ताहाल और हस्ताहाली मकामी बाशिंदों, मुसाफरों, ट्रांसपोर्टरों, तुलबा और मरीजों के लिए तशवीश का बायस बन गई है। पांच पीर से सलानी पुल तक जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर तकरीबन 300 मीटर सड़क की हस्ताहाल है। सड़क पर गहरे गड्ढे, टूटी हुई सतह और नाकस निकासी ने सफर को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। खास तौर पर खराब मौसमी हालात में बारिशों के दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। जब गहरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं तो तालाब की तरह दिखने लगते हैं और कीचड़ से सड़क तकरीबन नाकाबल गुजर हो जाती है। हजारों की तादाद में कौमी शाहरा पर रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियां गुजरती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम को बार बार अपील करने के बावजूद इस मसले के हल के लिए कोई खातर हवा इकदाम नहीं किए गए। इस तरह राजौरी बेला पुल से न्यू बस स्टैंड बेला तक, राजौरी से चौधरी नार डुडाई तक, द्रहाली मोड़ से द्रहाली पुल तक, रेडियो ऑफिस राजौरी से वर्कशॉप पुल तक सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। खराब मौसमी हालात में बारिशों के दौरान इन सड़क रास्तों पर गहरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे इन सड़क रास्तों पर सफर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मकामी लोगों और ताजरों ने जिला इंतजामिया व मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इन सड़क रास्तों की हस्ताहाली पर फौरी नोटिस लें और जरूरी मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम तरजीह बुनियादों पर शुरू करें। मजीद बिगाड़ को रोकने और इन सड़क रास्तों पर लोगों के लिए महफूज और हमवार रबते को यकीनी बनाने के लिए बर वक्त मदाखलत जरूरी है। राजौरी कस्बे में तेजी से रिहायशी बस्तियां आबाद हुई हैं। कस्बे में मतदद कॉलोनियां आज भी मुनासिब निकासी आब और सीवरेज निजाम से महरूम हैं, जिसके बायस मकीनों को पानी से भरी गलियां, टूटी फूटी सड़कों और सफाई सुथराई से मुतल्लक मसाइल का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक शहरी आबादी में तेजी से इजाफे के मुकाबले में बुनियादी शहरी ढांचे की तरक्की नहीं हो सकी। मतदद इलाकों में बारिश के निकासी का भी कोई मवसर निजाम नहीं। अगरचे हालिया अरसे में चंद इलाकों में कुछ बेहतरी आई है, तहम मकामी लोगों के मुताबिक मसला अब भी वसी पैमाने पर बरकरार है। बेला कॉलोनी के एक मकामी बाशिंदे ने शारबीन से बात करते हुए बताया कि गुज़श्ता कुछ दिनों से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक बारिशों के दौरान अंदरूनी गलियां जेर आब आ जाती हैं और शहर की सड़कें पानी से भर जाती हैं। बारिश का पानी दुकानों और रिहायशी अहातों में दाखिल हो जाता है, जिससे घरेलू सामान और तजारती अशिया को नुकसान पहुंचता है, जबकि आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर होती है। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुतअद्दद बार मुतल्लिका महकमों और म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी को गलियों और नालियों और सड़कों की मरम्मत के लिए अर्जी दी है, लेकिन अभी तक कोई खातरख्वाह नतीजे सामने नहीं आए। मकामी लोगों ने शारबीन के जरिए एक बार फिर मुतल्लिका हुकाम से अपील किया कि हस्ताहाल गलियों और नालियों की मरम्मत की जाए।
0: राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर श्रीनगर के खिम्बर जकुरा इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने के दौरान आज एक 18 साल मजदूर करंट लगने और बिजली के खंभे से गिरने के बायस जाम बहक हो गया। हुकाम के मुताबिक मजदूर हाईटेंशन बिजली के तार की जद में आने से शदीद करंट लगने के बाद खंभे से गिर गया, जिससे उसे मुतअद्दिद चोटें आईं। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मुर्तजा खटाना वलद अब्दुल रशीद खटाना साकिना घरकोट उड़ी के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस वाकये का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई शुरू की है। दरियास बरगाम में एनडीपीएस के मुबैना मुलजिमान के खिलाफ इनदामी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे रेवेन्यू ने नशा मुक्त अभियान के तहत खान साहब के पारनिवा और अरगाम इलाकों में मुबैना तजावजात, जिनमें एक टाइल फैक्ट्री, गांव खाना और दुकानें शामिल हैं, मिसमार कर दी। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मनुष्यात के खिलाफ जारी मुहिम का एक हिस्सा है। समन जम्मू खित्ते में जहां शिद्दत की गर्मी से लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं खित्ते के पहाड़ी जिलों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इस तालुक से इन दिनों सबसे ज्यादा शिकायत जिला कठुआ के बालाई

0: इलाकों से मिल रही हैं, जहां नदी नालों के साथ साथ तालाबों में भी पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मुकम्मल तफासील के साथ कठुआ से रमेश मरहटा।
1: कठुआ के बेशतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत से मुकामी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। शहर के अंदरूनी इलाकों में पीने का पानी दस्तियाब नहीं होने से लोग सड़कों पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। महकमा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। शहरबीन के इस नुमाइंदे ने शहर के कई इलाकों में जाकर लोगों से बराए रास्त बातचीत कर पीने के पानी की किल्लत की वजह जाननी चाहिए, तो मुकामी लोगों का कहना था जहां जहां गली कोचों की मरम्मत की जाती है वहां वहां पानी की पाइपें उखाड़ी जाती हैं या तोड़ी जाती हैं, जिस वजह से पीने की पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा मुतासिर रहती है। यही हाल बेशतर हिस्सों का है और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मुतलका महकमा को चाहिए था गली कूचों की मरम्मत के साथ साथ पीने के पानी की पाइपों को ना तोड़ा जाए और ना ही उखाड़ा जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। पीने के पानी की समस्या कठुआ के कंडी और मैदानी इलाकों में कई दिहाइयों से चली आ रही है। बरवाल, उत्तरी जंडोर, लोगेट के साथ साथ नगरी में पीने के पानी की किल्लत कुछ ज्यादा ही है। जंडोर गांव के रिटायर्ड कैप्टन मंगतराम का कहना है कि हमारे इलाके में बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे और आज भी ये तालाब हैं, पर उनकी हालत खस्ता है, सूखे पड़े हैं। मैं अपने बचपन में जब था तो ये तालाब पानी से भरे पड़े रहते थे। हम लोग यहाँ इन तालाबों में नहाया करते थे और अपने जानवरों को पानी भी पिलाया करते थे, पर अब ये तालाब बिल्कुल सूखे पड़े हैं। अगर इन तालाबों की अक्सर नव मरम्मत की जाए तो बारिश का पानी इन में जमा किया जा सकता है, जिस पानी का भरपूर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कम से कम बेजुबान जानवरों को पानी पिलाया जा सकता है। कठुआ में लोगों की आम शिकायत ये भी रहती है कि पीने के पानी की सप्लाई की क्वालिटी ठीक नहीं है। इस बारे में कई बार मुतलका जल शक्ति महकमा के आला अधिकारियों तक बात भी पहुंचाई गई है। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए जिला हुकाम ने आने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया है। 55 करोड़ रुपए की लागत से कठुआ, लखनपुर और नगरी कस्बाजात के लिए सन 2040 तक इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बारे में एमएलए कठुआ ने जल शक्ति महकमा के मिनिस्टर जावेद अहमद राणा से इस बारे में तफसीलन बात भी की है।
0: कठुआ से रमेश मरहटा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज चाडूरा में बने नए पुल के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें हांजूरा के रिहायशी तारिक अहमद जांभक हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा एसओजी की गाड़ी को पेश आया। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर लजन ने चाडूरा में पेश आए इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतवफी के लवाहकीन से ताजियत की है और उन्हें माकूल एक्सग्रेशन रिलीफ दिए जाने का मुतालबा किया है। जफर मीर लजन ने अपने बयान में मजीद कहा है कि बार बार अपील किए जाने के बावजूद बेले पुल को अपग्रेड न किया जाना यकीनन काबिल अफसोस है और हुकूमत की गैर संजीदगी का मुजाहिरा करता है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से हैं।

0: से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर भी आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद खर्रा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 20 जुलाई को नई दिल्ली में रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम का मुश्तरका मुतालबा है। तारिक हमीद खर्रा ने मजीद कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस लखनपुर से लोलाब तक मार्च भी निकालेगी। इसी दौरान पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज ऐलान किया कि वो 20 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजवजा एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के दो तलबा हादिया निसार और जैदान वानी ने NEET UG 2026 के कौमी इम्तहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग में बेतरतीब 99 और 124वां मकाम हासिल किया है। दोनों उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर में पहली और दूसरी रैंक हासिल की है। इस कामयाबी के साथ वो मुल्क भर के टॉप 125 उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं, जिसे खित्ते के लिए एक अहम एजाज करार दिया जा रहा है। समन डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आवारों कुत्तों के हड़बोंग ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। इत्तिलात के मुताबिक जिले में अब तक कुत्तों के हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। वाजिर है कि कुत्तों के हड़बोंग से निपटने के लिए रवां साल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाबिता हिदायत जारी की ताकि इंसानी जानों को खतरे से बचाया जा सके, पर डोडा हो या जम्मू कश्मीर का कोई और इलाका, यूं मालूम होता है कि मुतल्लिका हुकाम तक ये हिदायत पहुंच ही नहीं पाई हैं। गर्चे अदालत उज़्मा की हिदायत मुल्क भर के लिए हैं। फिलहाल डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
3: जिला डोडा के शहर देहात में बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद एक तश्वीशनाक सूरत हाल है, जिसकी वजह से कस्बजात के साथ साथ मुख्तलिफ देहात में मुश्किलात का सबब बनती जा रही है। सुबह और शाम बंदरों और आवारा कुत्तों के झुंड रायशी लोगों के घरों के इर्द गिर्द जमा रहने से तश्वीश का बाइस बने हुए हैं, जो कि राहगीरों के साथ साथ सुखली बच्चों के आने जाने के वक्त झपट पड़ते हैं। गुज़श्ता दो हफ्ते के दौरान डोडा और इसके गिर्द रवा में एक पागल कुत्ते ने 26 लोगों को काट लिया है, जबकि पिछले 4 महीनों के दौरान पागल कुत्तों ने 80 के करीब लोगों को बशमूल चंद बच्चों को काट लिया है। मगर इस ताल्लुक से न ही महकमा एनिमल हस्बेंड्री और न ही म्यूनसिपल कमेटी डोडा ने कोई कार्रवाई अमल में लाई है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि इन पागल कुत्तों के काटने और एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में न ही महकमा एनिमल हस्बेंड्री और न ही म्यूनसिपल हुकाम ने कोई भी जानकारी मुहिम लोगों को आगाह करने के बारे में न गुज़श्ता बरस और न ही इस बरस दी गई, जिसकी वजह से रेबीज के केसेस में गुन्ना इलाका में एक बच्चा भी गुज़श्ता साल लुक्मे अजल बना था। इन लोगों का मजीद मानना है कि अगर इस बारे में अवेयरनेस दी जाती तो यह हादसा पेश ना आता। एक आदाद शुमार के मुताबिक साल 2025 में पागल कुत्तों ने जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर 721 अफराद को काट कर जख्मी किया था, जिनमें गुंदना, आबली मासरी और ठाठरी में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज कर लिए गए थे। म्यूनसिपल हुकाम के मुताबिक अदालत आलिया ने इनको मारने के बजाय नसबंदी करने के अहकाम सादिर किए हैं और जिस हिसाब से एक कुत्ते पर तकरीबन 900 रुपया खर्च दरकार रहता है। कस्बा डोडा में इन पागल कुत्तों ने एक जगह पहले 9 अफराद को, दूसरी जगह 6 और दूसरी जगह 4 अफराद को काट लिया है, जबकि चंद अफराद को गुंदरा, आबली मासरी व गुंदरा में जख्मी कर दिया है, जिनको ठाठरी मेडिकल कॉलेज डोडा हॉस्पिटल इलाज मुआलजा के लिए भी किया गया था। मुख्तलिफ इलाका के लोगों ने इस ताल्लुक से अवामी बेदारी मुहिम चलाए जाने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी एहतियाती तदाबीर करने का खुद ही आदि हो। दरी असना बंदरों ने कस्बा डोडा के साथ साथ गाँव व देहात का रुख किया है, जहां इन बंदरों ने दही किसानों की जमीनों लगी सब्जी, मेवा व दीगर फसलों को शदीद नुकसान कर रहे हैं और घरों के अंदर व बाहर रखा हुआ साजो सामान को नुकसान करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। गुज़श्ता हफ्ता डोडा के एक महल

0: में इन बंदरों ने घरों में दाखिल होकर घरेलू साज सामान जिनमें शीशों, केबल, एलसीडी, पानी की टैंकियां, खेतों में सब्जी और दरख्तों से मेवा को तोड़ फोड़ करके नुकसान से दो चार किया है।
1: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ के जेर तामीर क्वाड़ पनबिजली प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक बावर्ची की मौत के बाद उनके लवाहकीन और मकामी समाजी कारकुनों ने जिले अस्पताल किश्तवाड़ में एहतजाज किया। मुजाहरीन का इल्जाम था कि प्रोजेक्ट इंतजामिया ने मैयत को आबाई घर पहुंचाने समेत दीगर जरूरी सहूलियात फराहम नहीं की। बाद एसएचओ किश्तवाड़ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया और लवाहकीन मैयत को अपने साथ ले गए। सरन वादी के लगभग हर जिले से शहरबीन को गिरा बाजारी की शिकायत पैदर पे मौसूल हो रही हैं। सार्फिन ये देखकर हैरान और परेशान हैं कि अशियाई जरूरिया की जो कीमतें एक माह पहले थीं, वो क्यों कर ऐसी उछाल ले गई हैं कि आज दोगुनी या ढाई गुना हो चुकी हैं। लोग रह रहकर सवाल करते हैं कि क्या कीमतों को इत्तेदाल में रखने का इख्तियार किसी सरकारी महकमे के पास नहीं है, और अगर है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने इस सिलसिले में कल ही के प्रोग्राम में कुलगाम से फारूक राफी की रिपोर्ट नश की थी, और आज इसी तनाजुर में बड़गाम से यूनिस परे की यह रिपोर्ट।
2: वादी कश्मीर में गर्मी के मौसम के दौरान सब्जियों, फलों, गोश्त और रोजमर्रा इस्तेमाल की किरियाना इशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी, जो कि आवाम के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। बाजारों में एशियाई जरूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब तबके की घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासर किया, जबकि लोग महंगाई की इस नई लहर पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में जिला बड़गाम के अतराफ अखनाब जिनमें बीरवा, बड़गाम, खानसाब, नारबल, सोईबुक, बीकेपुरा, चैरीश्री, पकरपुरा, चाडुरा, खाग और मागम से इतलात मौसूल हो रही है कि जिला भर में चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दुकानदार लोगों को दो दो हाथों से लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से मकामी लोगों में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। जिले के बड़े कस्बों में मुर्ग फी किलो 190 रुपए, अंडे का एक डब्बा 1600 रुपए, जबकि गोश्त 800 के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। वही अगर अंदरूनी इलाकों की बात करें तो यहां दुकानदारों ने नाजायज मुनाफाखोरी अपने उरूज पर पहुंचाई है, क्योंकि मुर्ग फी किलो 210 से लेकर 220 रुपए और अंडे की एक ट्राई 260 रुपए के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। वही जिला भर के बाजारों से लेकर छोटे दुकानदारों ने केले की एक दर्जन 150 रुपए, पपैया 90 रुपए, खरबूज 80 रुपए, तरबूजा फी किलो 50 रुपए, जबकि दीगर सब्जियों जिनमें प्याज, गाजर, मूली, सब्ज मिर्च, पालक और टमाटर व दीगर सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाकी लोग के मुतअद्दिद इलाकों में दुकानदारों एसोसिएशन की तरफ से नरख नामों की पाबंदी नहीं करते और अपनी मर्जी के नरख वसूल कर रहे हैं। यहां तक मटन डीलर्स, वेजिटेबल एसोसिएशन और दीगर अंजुमनों की जानिब से खामोशी इख्तियार की हुई है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मजीद कहा कि अगर कीमतों को काबू में रखने के लिए मौसर इकदाम न किए गए तो आने वाले महीने में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। पूछा जा सकता है कि गोश्त और मुर्गी की कीमतों को मुकर्रर करने में महकमे के पास कोई इख्तियार नहीं है, तमाम खाने पीने की चीजों और दीगर सामान के नरख मुकर्रर करने का अब भी कोई महकमे को इख्तियार है, जिससे वो बरोई कार नहीं ला रहे हैं, क्योंकि लोगों ने शहरबीन को बताया कि जिले में मौजूद महकमा फूड सेफ्टी के एहलकार अहम कस्बों को छोड़कर दही इलाकों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे और लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि बाजारों में कीमतों की बाकायदगी निगरानी की जाए, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुख्तलिफ एसोसिएशन के नरक नामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि आम लोगों को मजीद मुश्किल का सामना न करना पड़े।
1: बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी, और घड़ी का इशारा है कि शहरबीन का वक्त अब खत्म होने को है। इसी दौरान हमें किश्तवाड़ से एक और इत्तला मिली है कि किश्तवाड़ में इहाता इस्लामिया फरीदिया एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज नूर नूराना के इजरा के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्द हुई। वाजिर है कि किताब सूरह फातिहा और सूरह बकरा के मंजूम मानी पर मुश्तमिल है। इस मौके पर मुफस्सिर कुरान रियाज अहमद जरगर इब्न निशाद किश्तवाड़ की दस्तारबंदी की गई, जबकि तकरीब में शोरा, उदबा और दीगर मौजे शख्सियात ने शिरकत की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
2: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से।

0: long life for your appliances guaranteed. BS Voice, that's best service. Call now 9419001960.
1: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
2: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
3: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर लीड।
8: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनेंगे और खबरों के फौरन बाद तबसरा पेश होगा।

0: आवर लक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, जिसमें कहा कि नहीं लोकल प्रोडक्ट भी जो श्रद्धालु आवे देश भर से खरीदे, उसके कारण मुझे लगता है कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट या बाकी चीजों की खरीद भी काफी श्रद्धालुओं ने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा।
1: इस दौरान अब तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज सुपहर 4 बजे तक मजीद 15,527 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दरियासना आज जम्मू के भगवती नगर के बुनियादी कैंप से 4,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी पहुंच गया। दर्शन करने वाली यात्रियों में से बेशतर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री यहां की खूबसूरती, मेहमान नवाजी और यात्रा के हवाले से सलामती समेत किए गए तमाम इंतजामात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस ताल्लुक से कई यात्रियों ने हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा।
2: बिहार से यात्रा बहुत अच्छी लगी। बस यही है कि बाबा हमेशा बुलाए, हर साल आते रहे यहाँ पे। सुविधा सब तरह से अच्छा है।
3: गिरधर सोनकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छी यात्रा है भैया, हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है। हम 3 दिन पहले से निकले यहाँ, दर्शन के लिए जाएंगे बाबा अरफानी।
4: मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और राज्यपाल को मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को कि उसने बहुत ही बेहतरीन सुविधा की है। और इतने मस्त व्यक्ति है कि भगवती नगर बेस कैंप में थे तो उन्होंने स्वयं आकर जायजा लिया और हमसे बात की।
1: इम्तिहानात से मुतलिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नतीज का ऐलान किया है। इस इम्तिहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालिब इल्मों में से 11,21,000 तालिब इल्मों को मेडिकल, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। इस इम्तिहान में 138 तालिब इल्मों ने 720 में से 690 नंबरात हासिल किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 तालिब इल्म हादिया निसार और जैदान वानी शामिल हैं। हादिया निसार ने मुल्की सतह पर 99वां मकाम जबकि जैदान ने 126वां रैंक हासिल किया है। इन 2 तालिब इल्मों ने अपनी इस अहम कामयाबी के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा।
5: इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वॉज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। आपसे हो सकता था यू शोड अप एंड ओन दैट, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। एवरीबडीज जर्नी इज यूनिक, यू कैन नॉट रेप्लीकेट एनी वन एल्सेस जर्नी। तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया एंड यू नीड टू कंटिन्यू दैट इफ यू हैव द पैशन टू।
6: बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अगर आपको नीट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा फोकस को कॉन्सेप्ट पे ही देना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में भी आऊँ।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में कामयाब हुए तलबा बिलखसूस हादिया निसार और जैदान वानी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वजीर आला ने कहा है कि तलबा की यह कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और असातिजा व अफरादी खाना की गैर मुतजलजल तआवुन की अक्कासी करता है। वजीर आला ने यह इम्तिहान क्वालिफाई न करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि वह मजीद मेहनत करें और अगले इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूरी सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू सूबे के छंब हलके में 10 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में तरक्याती अमल को मसावी बुनियादों पर तकवीत बख्शने की वादबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात के शोबे में निजी सरमायाकारी को रागिब करने के लिए प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग महकमे की तरफ से तैयार किए गए अबूरी दस्तावेज के खद्दोखाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुजवजा पॉलिसी की मुवसर अमल आवरी के लिए इदारा जाती निजाम कायम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि सरमायाकारों और आम लोगों के एतमाद में इजाफा किया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आने वाले मॉनसून इजलास से पहले 19 जुलाई इतवार को सियासी पार्टियों

0: प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टेक्स के दौरान जम्मू कश्मीर की हैंडलूम और दस्तकारी सनत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 20 नुमाइशकारों ने भी इस नुमाइश में हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात पल्स या GSP पल्स की आम की गई स्कीम के तहत तिजारती फायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैनुल अक्वामी वादों पर इसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:32 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। इस हकीकत से कोई इनकारी नहीं हो सकता कि किसी भी मुआशरे की असल ताकत इसके नौजवान होते हैं। यही नौजवान कौम की फिक्री, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के ज़ामिन होते हैं। अगर यही तबका मुनशियात जैसे मुहल्लिक इफरियत की लपेट में आ जाए तो पूरा मुआशरा बेशुमार समाजी, अखलाकी और माशी मसाइल से दो चार हो जाता है। इसी हकीकत को पेश नजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में 100 रोज पर मुहित नशा मुखालिफ अवामी मुहिम का इनका किया गया, जिसका बुनियादी मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना और इज्तिमाई सतह पर एक ऐसा माहौल कायम करना था जहां मनुष्यात के लिए कोई गुंजाइश बाकी न रहे। तालीमी इदारों, दिही व शहरी इलाकों, समाजी तंजीमों, मजहबी व इल्मी हलकों, खवातीन और रजाकारों ने जिस अंदाज में इस मुहिम का हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा किया, इससे ये वाज़ेह हुआ कि मनुष्यात के खिलाफ जंग पूरी सोसाइटी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जब मुआशरा मुत्तहिद होकर किसी बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाए तो मुस्बत नताइज सामने आना फितरी अमर बन जाता है। इस मुहिम का सबसे अहम पहलू ये रहा कि नशा मुखालिफ पैगाम सिर्फ तकरीबात या जलसों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसे अवामी तहरीक की शक्ल देने की कोशिश की गई। स्कूलों, कॉलेजों, खेल के मैदानों और मुख्तलिफ अवामी प्रोग्रामों के जरिए ये एहसास उजागर किया गया कि मनुष्यात वक्ती लज्जत का नहीं बल्कि मुस्तकिल तबाही का रास्ता है। नौजवानों को तालीम, हुनर, खेल, सकाफती सरगर्मियों और मुस्बत मसरूफियात की तरफ रागिब करने पर खसूसी जोर दिया गया, क्योंकि खाली जहन और बेमकसद जिंदगी अक्सर मनफी रुझानात को जन्म देती है। जम्मू कश्मीर में इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ तबकात के दरमियान जो हम आहंगी देखने को मिली वो मुस्तकबिल के लिए एक हौसला अफजा अलामत है। वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ ज्यादा मुअस्सर राबता कायम करने की जरूरत को महसूस किया। असातिज़ा ने तालीमी जिम्मेदारियों के साथ साथ किरदार साजी के अमल को मजीद अहमियत दी। समाजी कारकुनों ने बेदारी मुहिम को अवाम तक पहुँचाया और नौजवानों ने खुद भी मनुष्यात से दूर रहने और दूसरों को इस नासूर से बचाने के अज़्म का इजहार किया। यही वो समाजी सरमाया है जो किसी भी इस्लाही तहरीक को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। यह हकीकत भी फरामोश नहीं की जा सकती कि मनुष्यात एक हमगीर समाजी चैलेंज है, इसलिए नशा मुखालिफ इकदाम को सिर्फ कानून नाफिज करने तक महदूद रखने के बजाय तालीम, नफसियाती रहनुमाई, हुनरमंदी और समाजी ताउन के साथ जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। खुश आयंद अमर यह है कि गुज़िश्ता 100 रोज के दौरान उसी जामिया सोच को फरोग देने की कोशिश की गई जिसके मुस्बत असरात मुख्तलिफ सतहों पर महसूस किए जा रहे हैं। जहां बहुत से खानदान बदनामी के खौफ से अपने मसाइल को छुपाने की कोशिश करते थे, वहां अब यह एहसास बढ़ गया है कि नशे के शिकार अफराद को इलाज, रहनुमाई और हमदर्दी की जरूरत होती है। इस सोच में तब्दीली एक सेहतमंद और महजब मुआशरे की अलामत है। जब मुतासर अफराद को दोबारा बाविकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाता है तो पूरा खानदान और समाज भी इसके मुस्बत असरात से मुस्तफीद होता है। जम्मू कश्मीर जैसे खत्ते में जहाँ नौजवान आबादी کا تناسب زیادہ ہے وہاں ایسی مہمات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نشہ مخالف مہم کو ایک وقتی پروگرام کے بجائے ایک مسلسل سماجی تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت سے بھی

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का खराब होना है। पाकिस्तान में दुनिया की तरह गवर्नेंस को चलाने के लिए दो ही सिविलियन इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी का सेटअप और सियासी सेटअप। मदद के लिए अदालतें और सख्त और मुश्किल हालात में फौज और इसके ज़ेली इदारे। समय पाकिस्तान में सियासी सेटअप वो नहीं जो दीगर ममालिक में है, यानी वहाँ लोग अपनी काबिलियत और मुकर्ररा तरबियत से सियासत में आगे नहीं आते, बल्कि पाकिस्तानी सियासत में आने के लिए आपको किसी के कंधे की जरूरत होती है। और अब तो वहाँ सियासत एक नस्ली कारोबार बन गया है। चंदे खानदान और शख्सियात ही के गिर्द सारा सियासी अमल घूम रहा है। ये सारे खानदान कोई और काम नहीं करते, लेकिन ये सारे खानदान खरबपति हैं या बारी बारी इक्तदार में रहते हैं, और फिर जब दूसरे इक्तदार में आते हैं तो ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चूंकि सियासत उनके लिए पैसा जमा करने का एक जरिया है, इसलिए वो अपनी बारी में इस जरिए को बेदरियग इस्तेमाल करते हैं। इस काम में उनकी मामनत ब्यूरोक्रेसी करती है और खुद भी इस गंगा से मुस्तफीद होती है। सियासतदान तो चंद एक बरस के लिए इक्तदार में आते हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी 3 से 4 दहाइयों के लिए मुकर्रर होते हैं। इसलिए वहाँ ब्यूरोक्रेसी सबसे बनाकर रखती है। इसलिए वहाँ गवर्नेंस पर तवज्जो कम हो जाती है और शख्सियात को खुश करने या उनके गलत कामों के करने पर तवज्जो ज्यादा रहती है। ये सिलसिला मुतवातिर वहाँ बढ़ रहा है और पाकिस्तान में गवर्नेंस खराब होती जा रही है। समय पाकिस्तान के पास दुनिया के 90% मालिक से ज्यादा वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। वो इदारा जो टैक्स जमा करने पर मामूर है, इसके अपने एदाद शुमार हैं कि सालाना 5,000 अरब से ज्यादा की खुर्द बुर्द होती है, और खासकर टैक्स जमा न करने के मद में ये करप्शन होती है। इस वक्त पाकिस्तान में सेहत के शोबे में लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, खासकर वो लोग जो छोटे अजला और देही जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलत तक दस्तियाब नहीं है। जब गवर्नेंस ठीक नहीं होती है तो इसका लाजमी नतीजा ये होता है कि करप्शन बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि वहाँ इसको ठीक कौन करेगा? ये काम हुकूमत का है और अदालतों का है। पॉलिटिकल निजामों के आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि जहाँ गवर्नेंस खराब करके पैसे बनाए जाते हैं, वहाँ सबसे पहले निजामी तालीम को खराब कर दिया जाता है और लोगों की तरबियत को इतना मुश्किल और पीचीदा बना दिया जाता है कि 1 या 2 दहाइयों में लोग उस खराब निजाम से निकलकर बराए रास्त उन लोगों के साथ शरीक होते हैं जो निजाम को खराब कर रहे होते हैं, या फिर इस खराबी का सहारा लेकर करप्शन कर रहे होते हैं। समीन, दुनिया का सारा निजाम बदल गया और दुनिया के तमाम ममालिक में किसी भी शोबे के माहरीन को निजाम संभालने के लिए दिया जाता है, मगर पाकिस्तान अभी तक अंग्रेजों के उस तरबियत से मुल्क चला रहे हैं जिसमें अंग्रेजों को अपनी मदद के लिए अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की जरूरत थी, और इस मकसद के लिए वो बाबू तैयार करते थे। काबिल, दयानतदार और काम पर अबू रखने वाले अंग्रेज चले गए, पीछे सिर्फ अंग्रेजी बोलने और समझने वाले मददगार रह गए। अब

मददगार किसी भी इल्म और काम के माहिर नहीं है। एक बीए पास बंदे को जब प्लानिंग की जिम्मेदारी देंगे जिसकी अली बे भी उसने नहीं पढ़ी तो वही करेगा जो इस वक्त पाकिस्तान के प्लानिंग के शोबे में हो रहा है। फिर एक बीए पास को आप ज़राअत देंगे तो वही करेगा जो इस वक्त ज़राअत के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। यही हाल सेहत, साइंस, मवासलात, हवाबाजी और हर शोबे में हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह गया और ये जो लाखों की तादाद में वहाँ लोग हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं वो सब लायबिलिटी बन गए हैं और चूंकि वो इस काम के माहिर नहीं जो उनको करने को दिया गया है इसलिए वो लोग इस काम पर तवज्जो नहीं दे पाते और उसकी जगह अपनी मुराद और इख्तियारात पर तवज्जो देते हैं। प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है, आप हमारे साथ बने रहिए और इस नात शरीफ से फैज़याब हो जाइए।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आप वादी की आवाज समाप्त कर रहे हैं। समी पाकिस्तान की 16 करोड़ से जायद नौजवान आबादी को आमतौर पर वहां सबसे बड़ा कौमी असासा करार दिया जाता है, लेकिन माहरीन के मुताबिक अगर यही नौजवान तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्की के मौके से महरूम रहे तो पाकिस्तान के लिए बोझ बन सकते हैं। समीन, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बुनियादी मसला नौजवान आबादी की बड़ी तादाद नहीं बल्कि तालीम, सेहत, खजाइत और रोजगार जैसे शोबों में कम सरमायाकारी है। इसी वजह से पाकिस्तान न सिर्फ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जनूबी एशिया की औसत से पीछे बल्कि बांग्लादेश और नेपाल से भी निचले दर्जे पर है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों और रियासती तरजीहात में नौजवानों को कितनी अहमियत दे रहा है, क्या उन पर इतनी सरमायाकारी की जा रही है कि वो पाकिस्तान की माशी तरक्की में फैसला कुन किरदार अदा कर सके। माहरीन कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल महज इंसानी हकूक का मसला नहीं बल्कि ये बराए रास्त मईशत से भी जुड़ा है। एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत कम है, फिर हर साल हजारों नौजवान डिग्रियां लेकर अमली जिंदगी में कदम रखते हैं लेकिन उनके पास सन्नत और कारोबारी शोबे के लिए दरकार महारतें ही नहीं होती। ख्वातीन की माशी शमूलियत भी इसी बहस का एक अहम पहलू है। वर्ल्ड बैंक और बैन अल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत महज 24% है जबकि बांग्लादेश में ये शरह तकरीबन 38% और नेपाल में 55% से ज्यादा है। माहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान आबादी की बहस का एक अहम नुकता यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत इतनी तेजी से रोजगार पैदा कर रही है जितनी तेजी से हर साल लाखों नौजवान लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदे वर्षों में हर साल तकरीबन 30 लाख नई मुलाजमतों की जरूरत होगी ताकि रोजगार की मंडी में आने वाले नौजवानों को जज्ब किया जा सके। उनके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90% रोजगार निजी शोबा फराहम करता है जबकि हुकूमत का किरदार महदूद है, इसलिए नए रोजगार के मौके पैदा करने का इन्हिसार बड़ी हद तक निजी सरमायाकारी, सन्नत, बरामदात और वहां की कारोबारी सरगर्मियों पर है। समीन, ये थी चंद बातें पड़ोस मुल्क के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नातीय कलाम से फैज़ याब होते हैं।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेज़बान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

सविनय प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज। आपको याद दिला दे कि आज रात 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे हेलो रेडियो क्लिनिक। प्रोग्राम के मेजबान हैं अबरा रसूल। मौजूद रहेगा कैंसर प्रिकॉशंस एंड केयर। उनसे बात करेंगे

0: कि आज रात 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे हेलो रेडियो क्लिनिक। प्रोग्राम के मेज़बान हैं अबरार रसूल। मौजू रहेगा कैंसर प्रिकॉशंस एंड केयर। उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के मेज़बान इरफान अमीन। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीटर में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लूक 5 लक्षण ताम मुफ्त इलाज हकदार वनुक ताम 2 करोड़ इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हज बचत सपुद अस करो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयो आयुष्मान का जानकारी बापत करो 1-4-5-5-5 फोन नंबर पे रबत कई
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी lead.
2: यह गए सुनिका श्रीनगर स्टेशन है 8:31 हो चुके हैं पेशे प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम
3: स्पोर्ट्स टाइम स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर अर्जेंटीना एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में दाखिल फर्क इतना है कि फाइनल में इस बार अर्जेंटीना के मद मुकाबल फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप की एक और टीम स्पेन होगी वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना क्या कुछ हो सकता है इस पर आगे बात होगी पहले नजर डालते हैं उन 2 सेमीफाइनल मुकाबलों पर जिनमें यूरोप की 2 बड़ी और बेहद मजबूत टीमें चैंपियन बनने की दौड़ से बाहर हो गई पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने हैरान कुन तरीके से फ्रांस को हरा दिया स्पेन सेमीफाइनल तक आते आते फ्रांस इस वर्ल्ड कप की बेहद मजबूत दावेदार बन गई थी और इसने लगभग अपने सभी हरीफों को आसानी हरा दिया था और टीम ने गोल स्कोरिंग एबिलिटी का भी शानदार मुजाहरा किया था पूरे टूर्नामेंट के दौरान फ्रांस के खिलाफ महज 2 गोल स्कोर किए गए थे कैलान एम्बापे ने 8 गोल स्कोर किए थे और वो गोल्डन बूट की रेस में शामिल थे जबकि ओसमान डेम्बेली और माइकल ओलिसे भी बेहद उम्दा फॉर्म में थे इन दोनों ने मजमुई तौर पर 8 गोल स्कोर किए थे दूसरी जानिब स्पेन की टीम थी जिसके पास इतनी तादाद में इस तरह के स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं थे तहम पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्पेन बेहद कम्पोज और क्लिनिकल नजर आई थी खासकर डिफेंस के मामले में पूरे टूर्नामेंट में इसके खिलाफ महज 1 ही गोल स्कोर किया गया था उम्मीद ये थी कि फ्रांस की जानिब से अटैकिंग जबकि स्पेन की जानिब से दिफाई हकमत अमली के जरिए से एक जबरदस्त कशमकश देखने को मिलेगी तहम इस बार स्पेन न सिर्फ दिफाई हकमत अमली के एतबार से एक कदम आगे बढ़ी बल्कि इसने कुछ इस तरह के चांसेस लिए जो बेहद कारगर साबित हुए एम्बाबे डेम्बेली और ओलिसे जैसे स्ट्राइकर्स की स्पेस पूरी तरह से बंद की गई जो इस कबल फ्रांस के खिलाफ कोई और टीम न कर सकी थी इस स्ट्रेटजी के जरिए जिस्मानी और जहनी तौर पर भी फ्रांस को परेशान किया गया और दोनों हाफ में मौका मिलते ही गोल स्कोर करके इन पर मजीद दबाव डालकर इन्हें ये जितलाया गया कि इस मुकाबले में इनके सारे हथियार नाकारा कर दिए गए हैं ये सेमीफाइनल शुरू होने से कबल बेशतर शायकीन की नजर में फ्रांस की टीम ही फेवरेट तस्वूर की जा रही थी तहम बहुत कम लोगों को पता था कि एम्बापे और

0: और ओलेस जैसे स्ट्राइकर्स को काबू में लाकर स्पेन ने इसी तरह से यूरो 24 के सेमीफाइनल में फ्रांस को हरा दिया था, जबकि 2025 के नेशंस लीग के सेमीफाइनल में भी फ्रांस को इसी तरह से स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फ्रांस के कोच डिडियर डिशाम के 14 साल की मुदत के दौरान फ्रांस की टीम ने न सिर्फ दूसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने का शर्फ हासिल किया, बल्कि इस दौरान फ्रांस की टीम यूरोपियन फुटबॉल की एक ऐसी टीम बन गई जिससे अमेरिकन फुटबॉल के ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी टीमों से मुशाबत दे सकते हैं। यूं पहले सेमीफाइनल में हमने कई एक बड़े स्टार से भरपूर टीम को एक बेहद क्लिनिकल और कंपोज्ड टीम से इस तरह हारते हुए देखा जिसका किसी को यकीन न था। पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में दूसरा सेमीफाइनल बेहद मुख्तलिफ रहा, जहां एक ऐसी टीम फातह बनकर उभरी जो खुद में यकीन रखती है, कम बैक करना जानती है, अपने अजीम कप्तान से बेहद मुतासर है और चंद लम्हों के दौरान एक नहीं बल्कि कई एक गोल स्कोर करने की सलाहियत रखती है। ये सेमीफाइनल था इंग्लैंड बमुकाबला अर्जेंटीना। हालांकि यूरोपियन फुटबॉल का एक बड़ा पावर हाउस होने और कई एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दाखिल होने के बावजूद इंग्लैंड को पिछली 6 दहाइयों से वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी जीतने का इंतजार है जो इस बार भी खत्म नहीं हुआ। मैच के 55वें मिनट में इंग्लैंड ने पहला गोल स्कोर करके लीड हासिल की और उम्मीद ये थी कि राउंड ऑफ 16 और फिर क्वार्टर फाइनल की तरह ही इस बार इंग्लैंड की टीम एक मरतबा फिर इस लीड को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगी और एक लंबे अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के बैरियर को अबूर करके बिलाखिर फाइनल खेलने का शरफ हासिल करेगी। लेकिन शायद यही ख्याल इंग्लिश खिलाड़ियों पर हावी हो गया। अभी खेल के 32 मिनट थे और सामने थी लायनल मेसी की टीम, जिसके खिलाड़ियों के लिए लायनल मेसी की उम्मीद की एक झलक या एक्सप्रेशन काफी होता है। इसके बाद वो हर किस्म की रिस्क लेकर मुकाबले में इस तरह डूब जाते हैं कि हार का अंसुर ही खत्म हो जाता है। अर्जेंटीना ने इजिप्ट के खिलाफ भी कुछ इसी तरह से करके दिखाया था और ये चंद दिन कबल ही हुआ था। इस बार भी इनके लिए ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे। तहम अर्जेंटीना ने इस तरह पांसा पलट दिया कि अगले 32 मिनटों के दौरान 88% बॉल पोजिशन अर्जेंटीना के पास ही रही। आम जुबान में कहा जा सकता है कि इसके बाद अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को गेंद दिखाई तो वो थी इंग्लैंड के गोल पोस्ट में। इंग्लैंड का डिफेंस पूरी तरह से बिखर गया और इस बार वो अपनी लीड को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे। अर्जेंटीना ने बिलाकर आखिरी 7 मिनटों के दौरान यके बाद दीगरे 2 गोल स्कोर करके मुसलसल दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंचने का शर्फ हासिल किया। इतवार को खेले जाने वाले फाइनल में इसका मुकाबला बेहद क्लिनिकल और कम्पोज्ड टीम स्पेन के साथ होगा। क्या स्पेन वही हकमत अमली अपना कर लायनल मेसी, फर्नांडिस और मार्टिन जैसे स्ट्राइकर्स को स्पेस खत्म करके अर्जेंटीना को मुसलसल दूसरा आलमी कप हासिल करने से रोक पाती है? एक जायजे के साथ हमारे साथी जावेद परे।
1: वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026, एक नया चैंपियन सामने आने में बस 2 दिन का वक्त रह गया है। हाईएस्ट शो ऑन अर्थ का फाइनल मुकाबला इतवार को खेला जाएगा। एक तरफ यूरोप से स्पेन और दूसरी तरफ जनूबी अमेरिका से अर्जेंटीना की टीमें इस फाइनल मैच में आमने सामने हैं। अर्जेंटीना की टीम दिफाई चैंपियन है और अगर इस टीम ने इस मरतबा भी टूर्नामेंट जीता तो 1958 और 1962 के बाद से ये पहला मौका होगा जब कोई टीम मुसलसल 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हो। 1958 और 1962 में ये कारनामा ब्राजील ने अंजाम दिया था। अगर अर्जेंटीना ये मुकाबला जीतती है तो ये इस टीम का मुसलसल 4th बड़ा टूर्नामेंट होगा। 2021 में इस टीम ने कोपा अमेरिका जीता और लायनल मेसी की टीम के लिए ये पहला बड़ा बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट था। एक साल बाद 2022 में इस टीम ने पेनल्टी किक्स में फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप हासिल करने के 2 साल बाद 2024 में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर फिर से कोपा अमेरिका जीता। स्पेन की टीम का डिफेंस बहुत मजबूत है। इस टीम के खिलाफ गोल स्कोर करना काफी कठिन काम होता है। पूरे वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में स्पेन ने अभी तक 1 गोल खाया है। वो गोल क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने उनके खिलाफ स्कोर किया था। स्पेन की टीम अगर इस मरतबा वर्ल्ड कप जीतती है तो ये इस टीम का दूसरा वर्ल्ड कप होगा। इन दोनों टीमों के माबेन आखिरी बार आपस में मुकाबला 27 मार्च 2018 को हुआ था। ये मुकाबला मैड्रिड के वेंडा मेट्रोपॉलिटन स्टेडियम में हुआ था जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 6-1 से रौंद दिया था। मजमू तौर से दोनों ममालिक के बीच अब तक 14 मैचेस खेले जा चुके हैं। 6 स्पेन ने जीते हैं, 6 ही अर्जेंटीना ने اور دو میچ

0: ड्रॉ रहे हैं। आलमी कप में इन दोनों टीमों का आमना सामना महज एक बार तबाह हुआ है, 1966 के आलमी कप ग्रुप स्टेज में, जिसमें अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से मात दी। 1978, 1986 और 2022 के बाद से ये अर्जेंटीना के लिए चौथा वर्ल्ड कप हो सकता है, जबकि 2010 के बाद से ये स्पेन के लिए दूसरा वर्ल्ड कप हो सकता है। अर्जेंटीना के लिए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पिछड़ने के बाद कामयाबी किसी मौजे से काम न थी। एंजो फर्नांडिस और लोटेरो मार्टिनेज के असिस्टेंस के बाद जिस कमाल महारत से लायनल मेसी ने गोल स्कोर किए, वो बिलाशुबा देखने से ताल्लुक रखता था। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से मात दी। ये टूर्नामेंट में छठा मौका था जब स्पेन ने कोई गोल नहीं खाया। इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने जो 19 गोल स्कोर किए हैं, उनमें से 12 गोल खेल के 75 मिनट के बाद आए हैं। आखिरी 10 मिनट में तो अर्जेंटीना की फॉरवर्ड लाइन कुछ ज्यादा ही अटैकिंग मूड में नजर आती है। स्पेन के खिलाड़ी टिकी टाका स्टाइल ऑफ प्ले को ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि ये तो टूर्नामेंट में उनका खासा रहा है। इस स्टाइल में छोटे छोटे और तेज तेज पासिस के जरिए टीम के खिलाड़ी पोजिशन ऑफ द बॉल को डोमिनेटिंग हद तक अपने पास रखते हैं, लेकिन अब टीम लॉन्ग वर्टिकल पासिस के जरिए भी बॉल को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुकी है। अर्जेंटीना की टीम अपने कायद लायनल मेसी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। 39 साल स्टार फॉरवर्ड 2022 के वर्ल्ड कप के मुकाबले में इस मरतबा कुछ ज्यादा बेहतर लय में नजर आती हैं। 2022 में 90 मिनट में उनकी मुतवका गोल रेट 0.26 थी, जो इस वर्ल्ड कप में दुगना बढ़कर 0.52 हो गई है। रमा टूर्नामेंट में मेसी ने मैचेस के दौरान जो फासला तय किया है, उसमें 64% उन्होंने वॉकिंग पेस की रफ्तार से तय किया है। नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड और फ्रांस के किलियन एम्बापे की रफ्तार इस मामले में 45% रही है। यूं मेसी इस फेरिस्त में भी टॉप पर हैं। ये आदादुशुमार देखकर गालिबन आप ये समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि मेसी जल्दी थक जाते हैं, तभी तो बेशतर वक्त वॉकिंग रफ्तार से चलते हैं, लेकिन इसका असल मतलब ये है कि खिलाड़ी किस हद तक अपनी तवानाई बचा के रखते हैं ताकि क्रिटिकल मौकों पर इसका सही इस्तेमाल किया जा सके। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, मेसी नोज हाउ टू रन, ही इज स्टिल ए प्रोफेशनल एथलीट, हिज वॉकिंग डिस्टेंस अप्रोच अलाउज हिम इन द 75th मिनट टू डिस्ट्रॉय पीपल ऑन द ड्रिबल। स्पेन के लिए माइकल ओयरज़ाबल फाइनल के लिए बहुत अहम होंगे। वो अब स्पेन की तरफ से आलमी कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। फ्रांस के साथ सेमीफाइनल में उन्होंने पेनल्टी पर जो गोल स्कोर किया, वो उनका 5वां गोल था, और मेसी और एम्बापे के साथ वो भी गोल्डन बूट के मजबूत दावेदारों में से एक हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ टीम ब्रिलियंस और दूसरी तरफ स्टार पावर। देखते हैं कि 19 जुलाई को कौन बाजी ले जाता है।
1: वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद मकामी खेल सरगर्मियों पर एक नजर, कुपवाड़ा स्पोर्ट्स रिपोर्ट के साथ हमारे साथी रईस मसरूर।
2: जिला कुपवाड़ा में शदीद गर्मी की लहर के बावजूद खेलों की सरगर्मियां पूरे जोश खरोश के साथ जारी हैं। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले रोजाना बड़ी तादाद में शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं, जिससे नौजवानों में खेलों के बढ़ते हुए रुझान की वाजह अकासी होती है। इस सिलसिले में हंदवाड़ा के मागाम में मुनक्कदा मौलाना जैद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हुआ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के मैदान में खेले गए इस टूर्नामेंट में शुमाली कश्मीर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला पाजीपुरा सोपोर और वागट क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। टॉस जीतने के बाद वागट क्रिकेट क्लब ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए पाजीपुरा सोपोर ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 218 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में वागट क्रिकेट क्लब की विकेटें वक्फे वक्फे से गिरती रही और पूरी टीम 16 ओवर में 118 रन पर सिमट गई, और इस तरह पाजीपुरा सोपोर ने 100 रन के वाजिया फर्क से टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाजिया टीम को 38,000 रूपये नकद इनामी रकम और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 18,000 रूपये नकद इनामी रकम और रनर्स अप ट्रॉफी दी गई। सोपोर के तनवीर अहमद शाला को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के एजाजात से नवाजा गया। तकरीबी तकसीम इनामात में स्पेशल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह, मारूफ ब्रॉडकास्टर और साबिक रांची क्रिकेटर सईद हिमायूं कैसर, मारूफ ब्रॉडकास्टर और टीवी

0: नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।

0: ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन

0: फिर नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन आइए चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से ये नगमा।

सभी ने अपने प्रेम रोग फिल्म से सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में यह खूबसूरत नगमा सुना।

0: आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: वजीर आजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तेलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से तआवुन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज़्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का अदा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि यह दौरा यूरोप के साथ भारत के वसी तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारिये 2026 में भारत की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारे में तमाम 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तज्जिया किया गया जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपये मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु ज़िले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़रात, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है।

नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमात की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तसनीफ करदा किताब आरएसएस एट 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि आरएसएस ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नज़रियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साल सफ़र इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फ़ाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अलतनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया। यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिजाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि जेपरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आज़ादाना तौर पर मुनाकिद कराए जाते हैं, जहां शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा और शुमाल मशरक़ी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज़ के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ODI भी खेला है जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संगमील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनाकिद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी

अंगेरडांग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है जिसमें चीन, इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के

0: इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
3: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियो वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 9:31 हो चुके हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं। हेलो रेडियो क्लिनिक।
4: हेलो रेडियो क्लिनिक वाली बोजो सेहत मुतलिक फोन इन प्रोग्राम। हेलो रेडियो क्लिनिक।
5: अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक ताज़ा शुमार है। छस्बो इरफान अमीन मलिक तुंदिस खिदमतस मंज हाजिर। स्टूडियोस में छै से तशरीफ फरमा डॉक्टर अबरार रसूल, ऑनकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब तुंद सठा खैर मकदम सैनिस प्रोग्राम में जुड़ने खातर
3: शुक्रिया।
5: सामीन इस प्रोग्राम में करो इस कथ कैंसर बढ़वन रुझान कश्मीर में। डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरुआत करो, यूजन वारे रिपोर्ट्स पेड़ में तिमन रिपोर्ट्स मुताबिक हर दो 35 केसेस डिटेक्ट गसान जम्मू कश्मीर में। ऑफिशियल डेटा तो वन कि पत्म 5 वन बढ़ो यह तैदा वह ज्यादा, क्या वजह क्या कैंसर बढ़ा जम्मू कश्मीर
3: में? रिसेंटली न्यूज तय तथा मज तय कि 35 to 38 केसेस वर्षा आम दोहे जे एंड के मे तथ रीजन अखी नई केसेस बढ़ान तथ शेख कह नई केसेस तक बढ़ान ब्या कि पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोज तुम्हें सर्वाइवल बढ़ो वे ज्यादा एज कम्पेयर टू 5-10 वरी ब्रोट स्टेज 4 कैंसर तुम ज्यादा टाइम नेरन कह मज 5-3-4 मंथ्स मज तुम एक्सपायर गसन बट आज तुम्हें सर्वाइवल तूत बढ़ोमुत ड्रग्स नई आमित तमो सुंद इंसिडेंस तिच पॉपुलेशन मज वुछना आमच यम दोनों इफेक्टर्स अख नई केसेस तिच बढ़न एज कम एज वेल एज यम पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोज तिहुन सर्वाइवल बढ़ो वन न्यू केसेसन क्या छ रिस्क फैक्टर्स यम छ वारिया इंपॉर्टेंट केज कि सानी सोसाइटी मन छ के चीज जित कि स्मोकिंग छ वारिया रैम्पेंट यी छ वारिया अख रिस्क फैक्टर। सिमिलरली यम इज डाइटरी हैबिट्स 15-20 वरी ब्रंट यम डाइटरी हैबिट्स तिम छ आज के तिम छ सिग्निफिकेंटली चेंज्ड एज कम्पेयर टू प्रेनिस वक्तस मज अस तथ मन छ जंक फूड्स हाई साल्ट नून चे ज्यादा यूज करन इन टर्म्स ऑफ नून चाय अदर या प्रिजर्वेटिव यूज गए ज्यादा आजकल इस खेन चन सोन यम चीज रिस्क फैक्टर। सिमिलरली वजन मोटापा ओबेसिटी रिस्क फैक्टर। सिमिलरली फिजिकल इनएक्टिविटी सारी आज यम काम मन तूत मुलवस कि तुम हेकन पन्नस सेहत ध्यान दिख कहे कन यम चीज के रिस्क फैक्टर्स कॉमन रिस्क फैक्टर्स सब इंसिडेंस कैंसर बढ़ो
5: आम तौर पर वो कि मोबाइल पे कॉल करा इंसान या मैसेज करा तो खेन चन वा घर विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी तथ मे पे कंज्यूम करा तुम वो सही कि जंक फूड या फास्ट फूड ज्यादा कंज्यूम करा तो इस रुझान तसान कि यह सारी खुद बोर्ड रिस्क फैक्टर कि बाकी तक रिस्क फैक्टर
3: اِن ایڈِشن باقٕے تہِ اوبیسٹی چھُ واریاہ سِگنِفِکینٹ رِسک فیکٹر. آلموسٹ 8 کینسٲرٕس چھِ یِم یِمن سٹرانگ ایسوسیشن, مطلب یِہُنٛد وٕچھنہٕ چھُ آمُت اگر اوبیسٹی کم گژھِ تِہنٛز رِسک گژھِ کم. تتھ منٛز چھُ زیادٕ کامن کولن کینسر, بریسٹ کینسر, سٹامک کینسر, یِہُنٛد چھُ سِگنِفِکینٹ ایسوسیشن وِد اوبیسٹی. کرونسٹی یۄس چیٖز کینٛہہ مطلب ڈایبٹیٖز.

रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।

0: हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, Together we lead.
2: इजाका सुनियन श्रीनगर स्टेशन मीडिया व्यूज आता रोट आचार्य 8 मीटर से FM 3.5 मेगाहर्ट्ज़ एंड बेट समीन वलो के नातिया कलाम बोजो आगाज मज बोजो गुलाम हसन सोवीत सैथिन हिजाबाज मज कलामी मिर्जा आरिफ बेग

0: आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 11:10 और 12 सेकेंड हो चुके हैं। आज की निश्रियात में आपसे इजाजत लेने से पहले पेश है कल हमारे यहाँ से पेश होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। समीन वादी की आवाज प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे शाम 8 बजे। डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर कुफारा आप समाप्त करेंगे शाम 8:30 पर। फिल्म म्यूजिक आप सुनिएगा रात के 9 बजे। रात 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे पेशरफ्त मौजू डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मेहमान है प्रोफेसर परवेज अहमद। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक। आपके खुदूत और मेल्स पर अपनी प्रोग्राम तुम्स फरमाइश आप सुनेंगे शाम 10 बजे। पेश करेंगे और रशीद निजामी। समीन नशरियात का आगाज होता है 6:28 पर। सुबह 6:35 पर प्रोग्राम पेश होगा सुबह गाही। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन लाइव शो पयाम सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है समीना शाह। कश्मीरी गजलें आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर। आयुष का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन आप समाप्त करेंगे सुबह 8:45 पर। समीना मकामी अखबारात की सुर्खियां आप सुनते हैं सुबह 9 बजे। न्यूज रील आप समाप्त करेंगे सुबह 9:30 पर। तहरीरो आवाज शबीर अहमद राठौर। प्रोग्राम सूफी सदा पेश होगा सुबह 10 बजे। कल का प्रोग्राम हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में होगा। तहरीर अब्दुल सलाम सोहरवर्दी। आवाज गुलशन बदरनी और शाहिदा अलवी। लाइव मॉर्निंग इंटरैक्टिव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। पेश करेंगे रशीद निजामी। छकर तुरु सुनिएगा सुबह 11:30 पर। जिसमें अली मोहम्मद शेख और साथी पेश करेंगे कलामी अहमद बटवर। फिल्मी नगमे आप समाप्त करेंगे दिन के 12:10 पर। बजमी निस्वा रास्ता होती है दोपहर 12:40 पर। फौजी भाइयों के लिए पहली निशस्त का प्रोग्राम समाप्त करें 1:10 पर। छकर तुरु पेश होगा दिन के 2:30 पर। अली मोहम्मद शेख और साथी पेश करेंगे कलामी अहद जरगर। फौजी भाइयों के लिए दूसरी निशस्त का प्रोग्राम पेश होगा ठीक दिन के 3 बजे। चार बजे पहाड़ी प्रोग्राम सुनेंगे शीना प्रोग्राम सुपहर 4:30 पर और गोजरी प्रोग्राम सुपहर 5 बजे पेश होगा।

गमीबाई निंद खत्र। ये प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे सुबह 6:05 पर। हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन पेश होता है शाम 7 बजे। तो सामीन ये थी कल हमारे यहाँ से मिश्र होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे व्यू 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के 11:15 और 37 सेकंड हो चुके हैं। सभी आज की नशियात से आप हमें इजाजत दें। कल सुबह 6:28 पर आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, जय हिंद।

0: तो जिसमें FIS और DIS की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि यह दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है। और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं।
1: देखिए इसमें ऐसा है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है जो FII और DIA का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है। खास करके FIIs काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है देन दे पुल देयर मनी, एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट। तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है, एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट।
0: बैलेंसिंग
1: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स। दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स। अभी तो हमारे ऊपर FII का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है। जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन है वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है, कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है।
0: ओके
1: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूं। लेकिन ओवरऑल जैसे FII और DIS का मैंने बताया, इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है। जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म के मीडियम टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप।
2: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks, you've seen that index heavyweights as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights, a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9-12% on the Sensex went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
1: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10-15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
0: और आगे बढ़ते हैं, एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया। वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे। एसपी अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमीकंडक्टर शेयरों का यहां पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
1: देखिए जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं, अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं। जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही हैं। उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है। लेकिन हम

0: रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है, जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही हैं। जैसे आज आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगी, कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे, तो उनका एक सस्टेन्ड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है।
1: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है, तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही, भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा, क्योंकि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं, पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए, जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं। और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल मई जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है। एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन दी हाई डबल डिजिट, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%, इंडिया इज 6.5-6.6%, आप अंतर देखिए कितना है। तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है, और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से ये आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं।
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
1: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है, और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर है कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है।
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है, और अभी ये हमने न्यूज देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफी वीक से इनमें बढ़ोतरी है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीजें मिलके, कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो, और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है।
1: राइट,
2: मूविंग ऑन टू मोर न्यूज। Pfizer OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade, will release the revised series of the Index of Core Industries, ICI, with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the revised series will replace the existing ICI series with a base year of 2011-12. The ministry said that iron ore has been included as a core industry in the revised ICI series, citing its extensive use in industrial production and a significant contribution to industrial development. With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9. Now, how do you see the inclusion of iron ore really redefining how we look at core industry data and, for that matter, factory output?
0: Yes, Arjun, these are very strong developments. We also revised our base year for the GDP, for the inflation, WPI, CPI. And recently, government has started a new thing for the services index. That will indicate the growth story of the services, because we are services dominating economy. So now this ICI is also very important, because core infra is also backbone of our industrial development. But the base was very old, actually 11, 12. Now the recent

0: 15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों, खासतौर पर अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके हम इसमें चल सकते मार्केट के बजाय।
1: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा, अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज्यादा हर रोज अनाउंसमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीजों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
0: एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: And now our closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं रोहिणी लेकर गीत मेरे मन में एक बार फिर से स्टूडियो से साथ हूँ दोस्तों। और दोस्तों, बड़े प्यारे एहसास आपसे साझा करूंगी और सदाबहार गीतों का साथ भी बना रहेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि कई दर्दों की गहराई कभी कभी केवल आंखों में आए आंसू से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार सबसे गहरी नमी पलकों के पीछे रह जाती है और पलकों के पीछे से गहराई को बताने का ये गुनगुनाता अंदाज आप तक मैं पहुंचाऊंगी इस आपके गीत मेरे मन मीत में, और जिसे आप सुनेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये गीत जो कि है तलाश फिल्म से, इस गीत को आवाज दी लता जी और रफी जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत ST बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मन मीत का इस गीत के साथ।

0: तो फरमाना।
1: ये तो पलकों से पीछे की बात थी, लेकिन जनाब अगर आपके ख्यालातों की बात हो तो ये गीत बड़े खूबसूरत अंदाज में इन बातों को बयां करते हैं। अगला गीत आए मिलन की बेला फिल्म से आप सुनेंगे लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुने ये अंदाज।

0: गए।
1: जी हाँ, इतने प्यारे गीत सुनकर बुरा तो शायद कोई नहीं मना सकता। 100.1 मेगा हर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत दोस्तों आप सुन रहे हैं और ये अगला गीत आपकी नजर करते हैं। जी हाँ, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, आवाज दी है रफी साहब और लता जी ने, और दोस्तों संगीत से इस गीत को सजाया है एस डी बामन जी ने।

दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ईश्वर का तो शायद यही सोचना है कि कुछ नहीं अच्छा तो दुनिया में बुरा भी कुछ नहीं, कीजिए सब कुछ मगर अपनी जरूरत देखकर। जी हाँ बिल्कुल, और जरूरतें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं दोस्तों। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो ना हम। 100.1 MHz पर गीतों का ये प्यारा अंदाज, सुरीला अंदाज आप सुन रहे हैं मेरे यानी रोहिणी के साथ। और ये अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

को कहते हैं ना कि आओ कि अब ये दिल चैन तो पा जाए, भटकारा ही कोई मंजिल को पा जाए। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। लेकिन श्रोताओं, ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये मुझे बार बार कह रही है कि आज गीत मेरे मन मीत को मुझे यहीं समेटना होगा। तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े जाती हूँ एक और बेहद सुरीले तराने के साथ। जी हाँ, अंजना फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे जिसे मखमली आवाज से सजाया है रफी जी और सुमन कल्याणपुर ने। और इस गीत को आवाज तो इन्होंने दी, लेकिन अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, और संगीत का आनंद आप लेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के अंदाज में। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए कुछ इसी अंदाज में।

0: नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भवह की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपका मनपसंद निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जिंदगी में आने के बाद बेकरार सा रहता था दिल मेरा हमेशा, पर अब सुकून मिलता है मुझे तुम्हारी बाहों में आने के बाद।

हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हवा के हर झोंके में तुम्हारा ही साया लगता है। अब तो लौट आओ कि सांसें भी पूछती हैं कि तुमने किसे इस कदर दिल में बसाया है।

तुमसे मिलने से पहले तक सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे मिलने से पहले तक तो सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे क्या मिले कि जिंदगी से ही मोहब्बत सी हो गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम निशिगंधा।

तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना ये सारा जमाना बेगाना सा लगता है।

तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है, तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है। ये देख कि वो अपनी रूह को भी तेरी चाहत में उतार बैठा है।

0: तेरी चाहत में खुद को भुला दिया, मैंने अपने हर पल तुझ पर लुटा दिया। मेरा दामन तो है तेरे कदमों की छाँव में, अब कोई फर्क नहीं धूप और छाँव में।
1: पथ पे चला, उस पथ पे

जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जब से तेरे साथ की कसम ले ली। अब तो मेरी किस्मत तेरे ही हाथों में है, मैंने अपनी खुशियां तेरे कदमों में जुड़ी।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपसे 1:10 पर फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। मिलते हैं थोड़ी देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है।

0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ. मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुवर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their life

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 23 सेकेंड, और अब समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तेरे संग ही जीना है मुझे, अब यही आखिरी चाहत है मेरी।

अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मुझे तेरी हर बात पर इकरार है, क्योंकि तू ही मेरी तकदीर।

तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में, तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में कि अब तेरे बगैर कहाँ जाएंगे हम, तू ही तो रहता है हर वक्त मेरी बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, इस धड़कन में बस तुम्हारा ही तो राज है।

जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं। मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, कदम तो बस मेरी तरफ ही आते हैं।

आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं, आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं कि देखो मेरा महबूब आता है इन वादियों में, तो ये बहारें भी मुस्कुराती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद कार्यक्रम रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए

0: सर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि ये जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं, साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचावकर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier.

का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सभी को एक बार फिर से

तेरी नजरों में कुछ तो बात है, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है।

जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास भी नहीं आती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये रात भी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। तुम पास हो तो धड़कनें भी गुनगुनाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद खुदा ने ये खुशियां बरसाई हैं।

में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, और तुम पूछते हो कि तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है।

दोस्तों, अब समय हुआ है समाचारों का। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य

0: रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier." Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Southern Ludhiana bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छलिया बापू के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अभी आपने गीत सुना छैला बाबू से। दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार हमेशा दिलों को करीब रखता है। और जब प्यार दिलों में बस जाए तो उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं लगता।

सच्चे प्यार में इंतज़ार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है और इंतज़ार की हर घड़ी प्रेम की गहराई को और बढ़ा देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है हम राही। प्यार की मधुर मुस्कान, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता। प्रेम की मासूम अदाएं, प्रेम की मासूम अदाएं कब दिल जीत ले पता ही नहीं चलता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार के बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं। प्यार में बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि मन कब सुकून और उजालों से भर जाता है।

तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, यादों की खुशबू हर पल साथ रहती है और मोहब्बत हर धड़कन में जिंदा रहती है।

और समय कह रहा है कि आप आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। छोड़े जा रही हूँ आपको हमराही कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल

0: के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen power train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. Union Home Minister Amit Shah has arrived in West Bengal on a 3-day visit. He was received by West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari on his arrival at Bagdogra Airport in Siliguri last night. Today, Mr. Shah will visit the BSF's 18th Battalion at Seema Chowki in Jumagach, where he will address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive, lay foundation stones, inaugurate several development projects and interact with BSF personnel. Later, the Home Minister will hold a series of high-level meetings at Uttar Kanya in Siliguri. The meetings will review various administrative matters, the implementation of the new criminal laws in West Bengal and the status of birth and death registration. Later in the evening, he will leave for Kolkata.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की लम्हे फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है हरिहरन ने।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से, इस गीत के संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म आनंद से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है अरुणिमा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सागर से एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरटी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरटी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इश्क पर जोर नहीं से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस टी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से साधना सरगम नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्दी मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जो आखिरी गीत है इस कार्यक्रम का, वो है फिल्म हरियाली और रास्ता से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। छोड़े जा रहे हूँ कुछ प्यारे से गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 54 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान

विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और ग्लेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ।

जीवन में शांति हमें सिखाती है कि जब मन में भक्ति और विश्वास हो तो जीवन का हर वनपथ भी सुंदर बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

जैसे सुबह की ठंडी पुरवैया मन को ताजगी देती है, वैसे ही अच्छी विचार, अच्छे सोच जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी।